0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी आपकी कसम।
1: और दोस्तों, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बड़े फैसलों की नहीं, बस अपने मन से बात कहने के तरीके को बदलने की जरूरत होती है। जापान के कुछ बेहद खूबसूरत विचार जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हर समस्या का समाधान उसे बदल देना नहीं होता है, कभी कभी उसे स्वीकार करने, उसे थोड़ा सा पीछे हटना और अपने अगले कदम, छोटे कदम पर ध्यान देना उसका समाधान होता है।
0: बिल्कुल। देखो, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जो हो चुका है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसे बार बार सोचकर हम अतीत नहीं बदल सकते। इसलिए हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को जाने देना भी जरूरी।
1: बिल्कुल। और दूसरा, कितनी बार हम थकान को, चिंता, भूख को, चिड़चिड़ापन और नींद की कमी को जिंदगी की समस्या समझ लेते हैं। कभी कभी मन को सलाह नहीं, बस खाना और नींद चाहिए।
0: बिल्कुल। और देखो, हर संदेश का तुरंत जवाब देना भी जरूरी नहीं होता, हर खामोशी को भरना जरूरी नहीं है, जिंदगी में कुछ खाली जगह भी रहने देनी चाहिए, क्योंकि हर खालीपन को तुरंत किसी जवाब, किसी व्यक्ति या किसी शोर से भरना जरूरी नहीं है।
1: और ना कहना भी सेल्फ केयर है, हर निमंत्रण स्वीकार करना, हर जिम्मेदारी उठा लेना और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना आपकी अच्छाई का प्रमाण नहीं है दोस्तों। कभी कभी एक बिल्कुल क्लियर नहीं आपके समय, ऊर्जा और मन तीनों की रक्षा करता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा मंजरा तुमने। और शिनरिन योकु, जब मन बहुत शोर करने लगे, कुछ पेड़ों के बीच जाइए और उसे देखिए। प्रकृति हमेशा हमारे सवालों का जवाब नहीं देती, लेकिन वो हमारे भीतर का जो शोर है वो थोड़ा कम जरूर कर देती है।
1: बिल्कुल। और वाबी साबी तो सबने सुना है, एक गलती ये तय नहीं करती है कि आप कौन है। आपका कोई असफल निर्णय या कोई टूटा रिश्ता, कोई अधूरा सपना आपकी पूरी पहचान नहीं है दोस्तों। अपूर्णता भी जीवन का हिस्सा है और कई बार उसी में हमारी सबसे सच्ची खूबसूरती छिपी होती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा मंजरा तुमने। देखो, और काइजेन की बात करें तो पूरी सीढ़ी को मत देखिए, बस एक कदम उठाइए। जब मंजिल बहुत बड़ी लगे तो उसे छोटे छोटे कदमों में बांट दीजिए।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी पतंग। और कार्यक्रम अपने समाप्ति की ओर है, जाते जाते आज की छोटी सी टिप, हर दिन अपने लिए कम से कम 15 मिनट जरूर निकालिए, फोन से दूर, शोर से दूर, बस अपने साथ, क्योंकि दूसरे का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना ना भूलें।
1: और देखो मंजुला, अभी हम अपने श्रोताओं को आज की प्रस्तुति का आखिरी गीत सुनवाएंगे फिल्म बातों बातों से, जिसमें आवाजें हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर की।
0: तो फिर मिलेंगे एक नई बातचीत, नए विषय और नई ऊर्जा के साथ।
1: तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। दीजिए प्रतिभा को
0: और मंजुला को इजाजत।
1: नमस्कार। उठे सबके।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीमा पार कराधान, नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके और भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
1: फास्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ इंडिया। वंस वी वर द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी फ्रॉम देयर वी

0: moved on to the developing economy. From there, we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्री सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। होर्मूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। भारतीय दूतावास ने बचाव अभियान के दौरान निरंतर सहयोग और सहायता के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। और जापान में जारी एशियाई खेलों के क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 15वें ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बनाए। इससे पहले भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने अर्धशतक लगाए। इसके अलावा एशियाई खेलों में आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास रच दिया है। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. Vice President C.P. Radhakrishnan has emphasized that economic resilience cannot be separated from social resilience and that inclusion is the foundation of resilience in a rapidly changing world. Mr. Radhakrishnan made these remarks during the inaugural address at the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi today. The Vice President said, democracy and development can advance together with consensus, inclusion and responsive policy making, providing the foundation for sustainable growth. He stressed that true resilience lies in ensuring that no citizen, enterprise or region is left behind and called for collective efforts towards building a Viksit Bharat by 2047.
0: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there, we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
2: The government has successfully brought back the hardened narco-trafficking kingpin, Navpreet Singh, from Turkey. Sharing this achievement of the country's enforcement agencies, Mr. Shah said that Navpreet Singh used to smuggle heroin and methamphetamine to India from Afghanistan by obtaining Turkish citizenship under the fake identity of Nabav Virk. He added that the agencies tracked him down, ripping apart veil after veil to unmask his true identity and secured his deportation. The Home Minister said that Navpreet Singh has been put behind bars in connection with multiple cases involving drug trafficking and other crimes. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India is building a network of free trade relationships that could eventually cover nearly 75% to 80% of the world's economies. Addressing an event organized by the US Indian Community Foundation in Chicago, Mr. Goyal said India has significantly expanded its trade negotiations in recent years, with several more talks underway. He said the growing network would give companies operating from India access to a much larger international market. Mr. Goyal said that before 2014, India had free trade agreements with economies representing around $10 trillion in GDP. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completed 12 years today. The first episode of the program was broadcast on this day in 2014 on the occasion of Vijay Dashami. The 138th episode of Mann Ki Baat

वक्त हो चला है 1:57 आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में आज हम किसको याद कर रहे हैं आप भी जरा गेस करने की कोशिश करिए। और आप बस जरा कल्पना करिए कि जब पर्दे पर हम कोई फिल्म देखते हैं, जब पर्दे पर तिरंगा लहराता है और बैकग्राउंड में फौजी बूटों की आवाज़ आती है, और सामने खड़ा जवान जब कहता है मुल्क पहले बाकी सब बाद में, तो किसका नाम जहन में आता है? जाहिर है जेपी दत्ता का। गुलामी हो, बॉर्डर हो, एलओसी कारगिल हो या फिर पलटन जैसी फिल्में, जेपी दत्ता ने हिंदी सिनेमा में देशभक्ति की कहानियों को एक अलग अंदाज में प्रस्तुत किया। तो आज उनका जन्मदिन है और हम उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और वो एक ऐसे फिल्मकार हैं जिसने सरहद की कहानियों को सिर्फ पर्दे तक ही नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें दर्शकों के दिलों तक पहुंचाने का काम किया। तो हम एफएम गोल्ड परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर कोई अच्छी सी फिल्म जरूर पर्दे पर आप लेकर आएंगे।

दोस्तों कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए सिनेमा एक सपना होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिनेमा उनकी जिंदगी का हिस्सा बनकर आता है। जेपी दत्ता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 3 अक्टूबर 1949 को मुंबई में जन्मे ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का रिश्ता फिल्मों से बचपन से ही जुड़ा था। उनके पिता ओपी दत्ता खुद फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, यानी घर में फिल्मों की बातें होती थी, शूटिंग के किस्से थे और सिनेमा का माहौल सब कुछ मौजूद था। शायद इसी माहौल ने जेपी दत्ता के मन में भी एक सपना जगाया, कैमरे के पीछे खड़े होकर अपनी कहानी कहने का।

मैंने आपको बोला था कि बॉर्डर सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, गोलियों के बीच दोस्ती की कहानी है, घर से दूर जवानों की बेचैनी की कहानी है, परिवार की याद की कहानी है और देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान देने कर देने का जज्बा है इस फिल्म में। यही वजह रही कि बॉर्डर दर्शकों के बीच खास जगह बनाने में कामयाब रही और जेपी दत्ता का नाम देशभक्ति वाली फिल्मों के एक अहम फिल्मकार के तौर पर पहचान बनाने लगा।

साल 1985 में आई थी जेपी दत्ता की पहली फिल्म गुलामी और उसके बाद बॉर्डर। बॉर्डर के बाद ऐसा लगा जैसे जेपी दत्ता ने अपनी फिल्मों के लिए एक खास दुनिया चुन ली है, एक ऐसी दुनिया जहां सरहद हैं, सैनिक हैं और उनके पीछे छोटे परिवार हैं। इसके बाद उन्होंने रिफ्यूजी, एलओसी कारगिल और पलटन जैसी फिल्में बनाई। इन फिल्मों में सिर्फ जंग के मैदान को नहीं दिखाया गया बल्कि उन जवानों की जिंदगी को भी दिखाने की कोशिश की गई जो अपने घर परिवार से दूर देश की हिफाजत में खड़े रहते हैं। यानी जेपी दत्ता के सिनेमा में सरहद सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीर नहीं थी, वो एक कहानी थी, जज्बात की कहानी।

जीपी दत्ता ने युद्ध पर आधारित फिल्में जरूर बनाई, लेकिन उन फिल्मों में मोहब्बत को डालना नहीं भूले, जज्बात को डालना बिल्कुल नहीं भूले। और शायद इसकी वजह ये रही कि उनके अपनी निजी जिंदगी

में भी एक प्रेम कहानी चल रही थी जो उस समय बहुत चर्चा का विषय रही। अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी के साथ जेपी दत्ता का रिश्ता प्यार में बदला और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। बताया जाता है कि परिवार इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था, लेकिन दोनों ने तमाम मुश्किलों के बावजूद शादी की और आज इस जोड़ी की दो बेटियां हैं, निधि दत्ता और सिद्धि दत्ता। और यहाँ कहानी एक बार फिर फिल्मों से जुड़ जाती है, क्योंकि बेटी निधि दत्ता अब अपने पिता की फिल्मी विरासत को आगे बढ़ाने की राह पर हैं।

ताशी दिलिक मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अक्टूबर महीने की 3 तारीख व दिन है शनिवार। अब आरंभ होता है आज का प्रसारण। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी रूम में उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री थुतन ताशी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री न्यूटन बोरा और श्री हमसरी, ट्रांसमीटर में उपस्थित रहेंगे अभियांत्रिकी सहायक श्री अच्युत बर्मन और श्री हिमांतो स्वर्गरी, मनपा उद्घोषक श्री कुंचो संगे की तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं आज की हिंदी उद्घोषिका गेंदन लामू। आकाशवाणी तवांग से कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।

0: 19th gold to the tally. India has also won 26 silver medals and 36 bronze medals already. In men's cricket, India were 3-for-1 in 2.3 overs against West Indies in the third and final ODI in Mulanpur, New Chandigarh, when reports last came in. In men's hockey, defending champions India will take on Malaysia, with the two teams meeting at the Gifu Prefectural Green Stadium with eyes on the gold and an LA 2028 Olympics quota. The match will start at 3:30 p.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government developing entire ecosystem based on cattle farming, giving push to rural economy, says Union Cooperation Minister Amit Shah. Commerce Minister Piyush Goyal says India's free trade agreements to cover 75% of world economies. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completes 12 years today. Five Indian nationals rescued safely after Kuwait flag tanker struck by projectile in Strait of Hormuz. And on the final day of Asian Games, Indian men's cricket team bags gold with 19-run win over Pakistan in finals. In men's hockey finals, India to take on Malaysia in a short while. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से

0: सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
1: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अधिकतर, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया। 38 डेवलप विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आइए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
4: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गाने के, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि ये भी हो जाएगा ऑपरेशन, जो आज भी आपका है ना नहीं पूछा था। हम बोला सर हाँ,

0: में काटे है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में सी में जाके ऐसा कागज डॉक्यूमेंट बताया ऐसा है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जोरन हॉस्पिटल से ही हुआ था।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे न छूटे।
2: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
1: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
3: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें, expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉ हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
5: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मुहूत ने इस

0: स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना के तहत आज सुनिए सुरेश वाडकर के आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत।

भक्ति गीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में चंद राधे कृष्ण भक्ति गीत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम वंदना जारी है इन्हीं कलाकारों के आवाजों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर की आवाज में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए मार्तो कंदक के आवाज में चंद आधुनिक कालो गीतों का।

श्रोता, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं मार्तो कंदक के आवाज में चंद आधुनिक कालो गीतों का, विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के दबंग केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत जारी है इन्हीं कलाकार के आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया मर्तो गंधक और साथियों के आवाजों में चंद आधुनिक कालों गीतों का। इसी के साथ ही विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए वंग अमा स्वयं सेवक समूह के अध्यक्ष श्रीमती नुबू ड्रेमा द्वारा सभी ग्रामीण महिलाओं से स्वयं सेवक समूह से जुड़ने की अपील।
1: नमस्कार, मैं नुबू ड्रेमा, वंग अमा सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रेसिडेंट। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, वंग अमा सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हूँ, और सभी अमा से अनुरोध है कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जरूर जुड़िए, क्योंकि गवर्नमेंट हम अमाओं के लिए बहुत सारा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। हम अमाओं के लिए गवर्नमेंट का जो सोच है वो बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि घर का अमा मजबूत रहेगा, घर का अमा आत्मनिर्भर रहेगा तो पूरा घर आगे बढ़ेगा। अगर हर गांव में हर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ के इस पे काम करेंगे, गवर्नमेंट से जो भी स्कीम्स आते हैं उसका फायदा उठाएंगे तो पूरा गांव आगे बढ़ेगा। और बहुत सारा प्रोग्राम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपको दिन ब दिन हमारे डिपार्टमेंट ARSLM के द्वारा से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कीम आता है उससे आपको जानकारी देते हैं। तो इस जानकारी का फायदा उठा के गवर्नमेंट जो भी आपको लोन देने के लिए कोशिश कर रहा है उसको लेने के लिए कोशिश करे, और अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये बहुत अच्छा जरिया है। और गवर्नमेंट आपको लोन दे रहे हैं, CLF, PLF, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये तीनों पायदान के अंदर में अलग अलग PLF में लोन देते हैं, सेल्फ हेल्प में लोन देते हैं। तो इसके अंदर में जब हमारा यहाँ CLF बन जाएगा तो एक छोटा सा बैंक हम सेल्फ हेल्प ग्रुप का होगा, तो कितना बड़ा सहयोग है गवर्नमेंट का, भारत सरकार का कितना बड़ा सहयोग है आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। गवर्नमेंट हर तरह से मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इस मदद का फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसे स्थिति आ जाता है कि पैसे के लिए हमको दर दर भटकना पड़ता, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में आने के बाद हमको पैसे के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में एक सेविंग होता है, PLF में एक अकाउंट होता है, CLF में एक होता है, कहीं से भी आप मदद ले सकता है। अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे तो हमको बैंक में भी कई बार दौड़ना पड़ेगा, किसी के पास भी कहीं पैसे का कमी होगा लेने जाने से हमको कई बार जाना पड़ेगा, कई बार लोगों के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ने के बाद में आपको किसी के सामने सिर झुकाना नहीं है। आप लोन लीजिए, लोन से आप सही समय पर लोन को चुकाइए। आप 1 लाख लोन लेता है, आप सही समय में चुकाता है तो गवर्नमेंट आपको 2 लाख लोन देगा, 2 लाख आप लोन लेके उसको चुकाता है तो गवर्नमेंट आपको 4 लाख लोन देगा। तो ये विश्वास, बैंक के साथ आपका अच्छा संबंध बनाइए, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऑफिसर के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में हमको क्या क्या स्कीम मिल सकता है जुड़िए, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट ARSLM डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में क्या स्कीम आया हुआ है उनको पता होता है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जो है दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में एक ब्रिज का काम करते हैं, इसलिए उनसे जानकारी लीजिए। अगर वहाँ नहीं पहुँचता तो डिपार्टमेंट में जाके पता लगाइए आपको किस चीज से सहायता चाहिए। सभी चीज का गवर्नमेंट हर समय हम अमाओं को मदद करने के लिए तैयार है, तो उस मदद को लेने के लिए हमको कोशिश करना है, और मदद लेके जो भी प्रोडक्ट तैयार करेगा बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सफाई के साथ में, अपना जगह का नाम कमाने के जरिए से आपको फैलाना है।

0: तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जितना अमा है उन सब अमाओं से मेरा अनुरोध है कि इससे जुड़े रहिएगा, इससे बाहर जाने के लिए मत सोचिए। ग्रुप में रहने से ही फायदा है, क्योंकि हम अकेला कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ग्रुप तो बहुत कुछ कर सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने प्रमाणित करके दिखाया है कि ग्रुप में रह के आप बहुत कुछ कमा सकती हैं, आप दुनिया देख सकती हैं। ये एक जरिया है, तो इस जरिया को आप फायदा जरूर उठाइए। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना वोंग अमास स्वयं सेवक समूह के अध्यक्ष श्रीमती नुरबू ड्रेमा द्वारा सभी ग्रामीण महिलाओं से स्वयं सेवक समूह से जुड़ने की अपील। इसी के साथ कार्यक्रम मेरी बात समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 हुए हैं। तो आइए आप शुरुआत करते हैं महिलाओं पर केंद्रित नगमों के कार्यक्रम नारी संगीत को। लीजिए, इसका कार्यक्रम का पहला नगमा प्रस्तुत है पुष्पा दलाइस फिल्म से जावेद अली के आवाज में। गीत के बोल है रकीब आलम के और संगीत देवी श्री प्रसाद का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का दूसरा नगमा प्रस्तुत है बागी फिल्म से मीत ब्रदर्स अरिजीत सिंह, रोज किल्ला और खुशबू ग्रेवाल के आवाजों में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है कुमार ने और संगीत से सवारा है मीत ब्रदर्स ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम नारी संगीत का अंतिम नगमा सुनिए, मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म से नेहा भसीन के आवाज में। इस गीत के रचनाकार है इरशाद कामिल और संगीतकार सोहेल सेन।

श्रोताओं, मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म के इस नगमे के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित नगमों का कार्यक्रम नारी संगीत यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय दोपहर के 3:50।

0: केशव।
1: हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
0: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD।
2: अरे ये कैसे रह गया?
0: पैसे गए?
2: नहीं नहीं नहीं, उपाय है उपाय है।
3: बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है।
4: ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
5: दादू ये
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सही कह रहा है।
8: तो चलिए साथियों, अब आरंभ करते हैं कार्यक्रम गीत मंजरी को, जिसके तहत हम आनंद लेंगे चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का। तो लीजिए पहला नगमा प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मंजरी का, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के आवाजों में। गीत के बोल है इरशाद का मिलके और संगीत विशाल शेखर का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का दूसरा नगमा हमने चुना है ओम शांति ओम फिल्म से, जिसे शब्द दिया है जावेद अख्तर ने, संगीत विशाल शेखर ने और आवाजें शान उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और राहुल सक्सेना ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाजों में एक बेहद से खूबसूरत गीत का, जो कि था दबंग फिल्म से, जिसे रचा है फैज अनवर ने और संगीत से संवारा है साजिद वाजिद ने।
1: अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया के स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स OTT पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा प्रस्तुत है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म से के और डोमिनिक सिरेयो के आवाजों में। गीत को शब्दों में पिरोया है नीलेश मिश्रा ने और संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

0: श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं चंद आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत, जिसका प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए सुनते हैं आरबीआई द्वारा जारी एक जरूरी संदेश।
1: टीकू जी, 100 ग्राम पेड़े देना।
2: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
1: अरे क्यों?
2: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
1: अरे भाई, आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
3: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
1: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
2: दे रे भाई,
4: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे।

0: Seguí.
1: तो चलिए इस कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं रेडी फिल्म से एक गीत के और तुलसी कुमार के आवाजों में। गीत को शब्दों में पिरोया है नीलेश मिश्रा ने और संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

0: जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स OTT इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स OTT और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें, और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजरी का अंतिम नगमा ये सुनते हैं सुल्तान फिल्म से पापोन के आवाज में। इस गीत को शब्दबद्ध किया है इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध विशाल शेखर ने।

0: श्रोताओं, सुल्तान फिल्म के इस नगमे के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम गीत मंजरी यहीं समाप्त हुआ।
1: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1-3 minute का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वेव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वेव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5

0: लाख रुपीस। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक, तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। इस कार्यक्रम के तहत आज आनंद लीजिए रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन का राग है अलाप, तथा तबले पर संगत दे रहे हैं दुर्गा प्रसाद।

श्रोताओं अभी आपने आनंद लिया रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन का। इसी के साथ ही शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 4:45 होने वाले हैं। अब से चंद ही पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज भारत में स्वच्छता के बदलते स्वरूप को रेखांकित करते हुए कहा कि ये जन भागीदारी, नवाचार और सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतिबिंब। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के सीबे सर्कल के अंतर्गत दूरस्थ सीबे गांव में एकीकृत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस्ट द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के सहयोग से कानूनी अधिकारों पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित। अरुणाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने भातवानी AI की तकनीक से सहयोग से ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन, पासीघाट और मेबो ब्लॉक्स में 3 बैचेस में 3 दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित की। हॉर्मुज जलदमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास भी शामिल है। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में कहा है कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सबसे अधिक लाभ पाने वाले में पशुपालक भी शामिल है। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए। और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में US इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल में के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी है। उन्होंने कहा है कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत में संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा है कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग $10 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते रहे हैं।
3: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अधिकतर, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या GDP देखें तो $10 ट्रिलियन। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप्ड विकसित देश, और उन सब की अगर GDP का आंकड़ा ले तो वो $60 ट्रिलियन।
0: अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज भारत में स्वच्छता के बदलते स्वरूप को रेखांकित करते हुए कहा

कि यह जनभागीदारी नवाचार और सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतिबिंब है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन की 12 वर्ष की यात्रा पारंपरिक स्वच्छता अभियानों से आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी आधारित और टिकाऊ समाधानों तक पहुंच गई है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित स्वच्छता प्रणालियां भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि यह अभियान अब जन आधारित आंदोलन को रूप ले चुका है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ और हरित समुदायों को बढ़ावा देने के साथ ही स्वच्छता कर्मियों की गरिमा सुनिश्चित करना भी है। श्री मेन ने राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भूमिका पर भी जोर देते हुए कहा।

0: कराने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के सीबे सर्कल के अंतर्गत दूरस्थ सीबे गांव में एकीकृत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी लोअर सियांग द्वारा नॉर्थ ईस्ट फाउंडेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड लाइवलीहुड स्किल्स यानी एनी हील्स के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, सामान्य चिकित्सा और सर्जरी संबंधी परामर्श के अलावा कैंसर, टीवी, मानसिक स्वास्थ्य और ऑडियोमेट्रिक जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सीबे और आसपास के क्षेत्र के करीब 190 लोग शिविर से लाभान्वित हुए। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के सहयोग से महिला सशक्तिकरण, नशे के दुरुपयोग की रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, थर्ड जेंडर के समावेशन तथा महिलाओं और बच्चों के कानूनी अधिकारों पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नेरिस्ट के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र एस और अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष यालेम तागा बुरांग ने सामाजिक चुनौतियों से निपटने में जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। पत्रकार तोंगम रेना, डॉक्टर इकाम बाकरा, डॉक्टर युमा नारा एंड एडवोकेट निकिता दांगेन सहित विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के नेतृत्व, मादक पदार्थों के दुरुपयोग, मानसिक स्वास्थ्य, समावेशन और कानूनी सुरक्षा उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान की। अरुणाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने बाधवानी एआई के तकनीकी सहयोग से ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन, पासीघाट और मेबो ब्लॉक्स में 3 बैचेस में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। प्रशिक्षण में नवजात शिशु एंथ्रोपोमेट्री एआई टूल्स और घर आधारित नवजात शिशु देखभाल यानी होम बेस्ड न्यू बोर्न केयर को शामिल किया गया। इस पहल के तहत बाधवानी एआई द्वारा विकसित एआई सक्षम एप्लीकेशन को पेश किया गया है जो अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 42 दिन तक के आयु के नवजात शिशुओं की निगरानी में सहायता प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से इस समर्पण में लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया इसकी जानकारी देंगे।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं। यानी लाभार्थी को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आइए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
2: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि ये भी हो जाएगा ऑपरेशन, जो आज भी आपका पास है ना नहीं है पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार,
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शुभ्रशाची भट्टाचार्य। Indian Home and Corporation Minister Amit Shah has said that the Narendra Modi government is developing a complete ecosystem around cattle rearing, from converting cow dung into biogas and organic fertilizer to processing dairy products and providing market access to give a new boost to the rural economy. Addressing the state-level Gau Palak Sammelan in Bhopal today, Shah said, cattle rearers would be among those benefiting the most from the formation of the Ministry of Cooperation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India is building a network of free trade relationships that could eventually cover nearly 75 to 80% of the world's economies. Addressing an event organized by the U.S.

नमस्कार। आज के इस कृषि जगत में आप सभी सुनने वालों का बेहद स्वागत है। आज हम जो आपके लिए टॉपिक यानी कि विषय लेकर आए हैं वो है बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग, और इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं वन राजा वैरायटी के बारे में, जो कि आजकल किसानों के लिए अगर इसे पाला जाए, पालन पोषण किया जाए इसका, तो आपको काफी इसमें लाभ मिल सकता है। तो हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं उन गेस्ट का मैं स्वागत करना चाहूंगी, डॉक्टर धोनी जीनी, सीनियर

0: साइंटिस्ट वेटरनरी एक्सटेंशन ICAR अरुणाचल प्रदेश सेंटर बासर में। तो सर आपका बहुत स्वागत आज के प्रोग्राम में।
1: थैंक यू।
0: सबसे पहले तो सर हम बात करने वाले हैं बैकयार्ड पॉलिटी के बारे में, तो इसका जो इतिहास है हमारे ट्राइबल सोसाइटी में इसके बारे में कुछ बताइए जी, और आगे वनराजा जो वैरायटी है उसके बारे में क्यों इम्पोर्टेंट है इसे पालन पोषण करना, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: थैंक यू मैडम, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया गया इसके बारे में बताने के लिए।
0: जी जी जरूर।
1: जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा ट्राइबल कम्युनिटी है, तो बैकयार्ड पॉलिटी जो या हम घर में जो आप मुर्गी पालन करते हैं
0: जी,
1: तो वो ट्रेडिशनल मेथड से कर रहा था, जो पुराने जमाने से। तो उसमें अब देखा गया है कि उसमें जो मेनली है मीट प्रोडक्शन, जो उसका मीट प्रोडक्शन एंड एग प्रोडक्शन, अंडे प्रोडक्शन, बहुत समय लगता है।
0: जी जी।
1: जैसे कि एक एडल्ट जो हमारा मेल को बोलते हैं, कॉ फीमेल को बोलते हैं, वो लगभग 1.5 साल लग जाता है, बल्कि उसके 1 किलो होने के लिए। और उसका अगर देखा जाए तो हमने देखा पाया है कि जो एग प्रोडक्शन, जो अंडे है, इसको बोलते हैं साइंटिफिकली AEP, उसको बोलते हैं एनुअल, हर साल में एनुअल एग प्रोडक्शन, वो हार्डली 40-50 एग होता है
0: जी।
1: तो अगर देखा जाए तो उसमें आपका मीट प्रोडक्शन में बहुत समय लगता है, सिमिलरली एग प्रोडक्शन काफी समय लगता है। तो आईसर ने सोचा है कि किस तरह से हम किस कृषि भाइयों बहनों के लिए कि हम मुर्गी पालन को फ्रॉम कमर्शियल, मतलब ट्रेडिशनल मोड से चलकर थोड़ा से प्रोडक्शन मोड में दिया है। प्रोडक्शन मतलब थोड़ा सा आप बाहर भी सेल कर सके,
0: सिर्फ खुद खाने में इस्तेमाल नहीं करके। जी जी।
1: आप बाहर भी सेल कर सके ताकि आपका एक्स्ट्रा इनकम हो सके, क्योंकि मेनली जो है हमारा फोकस है ऑन द वुमेन्स, कि वुमेन ही ज्यादातर मुर्गी पालता है। तो डायरेक्टर ऑफ पोल्ट्री रिसर्च जो हैदराबाद में है, वो ICAR का मेन इंस्टीट्यूट है, तो वही पोल्ट्री में काम करते हैं। तो उसने 2001 में वन राजा बोल के एक वैरायटी डेवलप किया गया, वन राजा, वन का राजा, जंगल का राजा,
0: जी, जंगल का राजा।
1: तो वन राजा का एडवांटेज क्या है, ये आपका लोकल बर्ड की तरह है, तो उसको आदमी जैसे कि आप ब्रॉयलर करेंगे, क्रॉलर करेंगे, लगे कि तो बाहर का वैरायटी, लेकिन वन राजा ऐसे कि इट लुक्स लाइक लोकल बर्ड से दिखाई देगा। दूसरी बात है उसका जो एक है, अंडे है, एंड अंडे भी आपको ब्राउन से लेग देता है, लोकल अंडा जैसे होता है, लेकिन लोकल अंडा होने से उसका साइज ऑफ एग्स कम्पेयर टू आपका लोकल एग से काफी ज्यादा है। तीसरा है कि आप बोलेंगे कैसे पालेंगे, सबसे बड़ा इश्यू होता
0: है। जी, जी, जी।
1: तो पालने के लिए आपको वन राजा का ये ऐसा है, आप जैसे आप लोकल बर्ड पालते हैं सेम ऐसे पाल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें कुछ कुछ हमें जैसे कि मैनेजमेंट एस्पेक्ट बोलते हैं, जैसे कैसे खिलाना है, कैसे घर बनाना है, कैसे कैसे उसको बीमारी से छुटकारा के लिए वैक्सीनेशन करना है, वो कुछ छोटी छोटी बात ध्यान रखने से तब ये इजिली एक्सेप्टेबल है और आप आराम से आप पाल सकते हैं। तो वन राजा कैसे है कि हमने जैसे ICAR बसर 2011 में का बात बता रहा हूँ, तब हमने लेके आया था, तो फार्मर को देने का पहले हमने कुछ ट्रायल कर चुका है, तो 2 साल ट्रायल किया अपने फार्म में, तो देखा कि अच्छा उसका प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी था। तो फिर हमने क्या ये जो ब्रीड या ये जो वैरायटी है, क्या ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा इन फील्ड कंडीशन, किसानों को खेत में, क्योंकि फार्म कंडीशन सब सक्सेस होगा। तो मैंने यहाँ पर आपका लिकावली साइट में, फिर बासर में और मेचू का, 3 जगह को सेलेक्ट किया गया। ये एजम क्या है कि लिकावली से एक लो एल्टीट्यूड होगा, गर्मी जगह है, और बहुत सारी गर्मी जगह हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। सिमिलरली मिड एल्टीट्यूड जो ठंडा टाइप का, जैसे कि बासर हो गया जो 660 to 1000 MSL के अंदर में, और हमारे से भी कोई जगह है जैसे कि आप बोलेंगे मेचुगा, तवांग, बोमडिला, काफी
0: जगह
1: है।
0: जी जी।
1: तो वो जगह में हमने उस दिन वो जगह में भी हमने सोचा है कि ट्राई करके देखेंगे, तो पाया गया कि रियली इट वाज सक्सेसफुल। सो हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं कि वनराजा को हम लोग ये अरुणाचल प्रदेश में रिकमेंडेड वैरायटी है वो। तो अभी आप पूछेंगे कि कैसे पालना है, ऑब्वियसली क्योंकि तो आप जैसे कि बर्थ ले लिया, आपने लेके आ गया, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन में घर कैसे बनाऊं। तो घर बनने का कोई सिंपल लॉजिक है, हमारा जो ICAR का, जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आपका सस्ता इकोनॉमिकल ना, जो उसको एडॉप्ट कर सके
0: जी।
1: तो हमने कोई हाईफाई घर नहीं बनाया कि आपको बिल्डिंग घर चाहिए, बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है, महंगा भी होता है, और हमारा प्यारा ये किसान भाइयों भी एफोर्ड नहीं कर सके।
0: जी, जी, जी।
1: जो उसके पास में अवेलेबल है उसी को करना चाहिए, जैसे कि हमें बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लिकावली में। लिकावली में जैसे मैं पहले बोला है बहुत गर्मी जगह है, तो लिकावली एरिया गर्म है, तो आप जो भी घर को बनाना है ऐसा जगह बनाइए जहां पर आपका पानी लॉगिंग नहीं, पानी जमा ना होना, आपको जो भी जगह सेलेक्ट कर पानी जमा नहीं होना, डैम जगह ना होना चाहिए,
0: सूखा होना चाहिए।

0: चाहिए। उसके बाद में आप जगह को देख लिया, दूसरी बात है अभी आपका घर का डायरेक्शन, क्योंकि वो इम्पोर्टेंस को ज्यादातर ये वेटनरी में हम कहते हैं कि ओरिएंटेशन और बिल्डिंग इंग्लिश में कहते हैं
1: जी जी।
0: जैसे हम अपना घर बनाते हैं डायरेक्शन होते हैं वास्तु, वास्तु बोलते हैं ना वैसे ही है। तो हमारा डायरेक्शन ऐसे होने की इसका जैसे कि सुबह का जो सूरज है जो मॉर्निंग होता है ईस्ट से वेस्ट होता है
1: जी।
0: तो घर का जो जैसे घर तो रेक्टेंगल साइज में होता है, घर का लंबा वाला साइड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होना चाहिए ताकि मॉर्निंग का जैसे घर ये बना है मॉर्निंग जब आपका मॉर्निंग 8 to 10 का जो धूप है घर में लगना चाहिए, 10, 11, 12, 1 बजे बहुत गर्मी होता है तो घर का छत से प्रोटेक्शन होना चाहिए, फिर जब 2-3 बजे होगा फिर धूप मिलना चाहिए
1: जी जी।
0: तो ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग या घर का जो डायरेक्शन हमेशा लंबा से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होना चाहिए,
1: नॉर्थ टू साउथ जी जी जी।
0: सेकेंडली अभी हो गया आपका घर का डायरेक्शन हो गया, अभी आपको घर के मेटल कैसे क्या क्या यूज करना चाहिए। तो किसान भाई और बहनों की आप जानते हैं कि मेटल आपके पास अवेलेबल है, आपको कोई खर्चा नहीं करना चाहिए। जैसे कि इनकेस आपके पास बैम्बू है, वुडन है, फिर आपको तोको पत्ता है जो एफोर्ट टीना लगा सकते हैं, तो वो चीज को आप ध्यान देना चाहिए। तो आपका घर का जो स्पेसिंग बोलते हैं एक बर्ड का
1: दूरी जो है जी जी।
0: एक बर्ड का एरिया हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं 1 square feet, एक स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। तो अगर 10 बर्ड है तो 10 square feet एरिया हो, वो हिसाब से आपका एरिया बनाना पड़ेगा घर को। तो आपका जो ये होगा हाइट ऑफ द घर होगा मैक्सिमम 10 to 12 feet होना चाहिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आ गया फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग जैसे कि अभी फ्लोरिंग से बहुत बीमारी भी आता है, तो फ्लोरिंग के अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो फ्लोरिंग पे आप थोड़ा से सीमेंट का वॉल बना लीजिए, सीसी फ्लोरिंग दलाई कर लीजिए, 5 इंची मोटाई होना चाहिए। उसके ऊपर में आप आपका धान का भूसी जो भी डाल दीजिए ताकि वो एक किस्म का ये करेगा, मतलब क्या बोलेगा उसको, गर्मी देगा।
1: अच्छा अच्छा, गर्मी
0: देगा। जब वो मुर्गी या मुर्गा जब वो ये आपका टॉयलेट करेगा तो वो मिक्स हो जाएगा, तो वो डैम नहीं रहेगा। और थर्डली है कि घर का वॉल, अभी जो डिफरेंट वॉल जो होते हैं दीपावली एरिया काफी गर्मी होता है, तो आपका जो वॉल का हाइट होना है अराउंड 3 feet होना चाहिए, 3 feet जो आराम से हो ये हवा भी जा सकेगा,
1: आना जाना
0: कर सके और उसको ठंडा भी नहीं लगे। ये एक हाउसिंग के बारे में। और अगर देखा जाए ये हाउसिंग अगर हम अभी सपोज थोड़ा ऊंचा जगह ठंडा होता है, सपोज बसार हो गया जो उसका 60 to 1000 MSL है, तो आप ठंडा पड़ता है
1: जी जी।
0: तो डिफरेंस वही हुआ कि जो आपका वॉल का हाइट आप 6 feet कर देना चाहिए,
1: ज्यादा ऊंचा कर देना चाहिए
0: ताकि हवा ऊपर से चला जाए। लेकिन आप ब्लॉक नहीं कर
1: सकते
0: सफोकेशन हो जाए, क्योंकि जो भी मुर्गी है जब वो टॉयलेट करता है तो उसमें एक एमोनिया गैस फॉर्मेशन होता है, वो एमोनिया गैस मुर्गी के लिए हानिकारक है और आपके लिए हानिकारक है अगर आप घर में पालेंगे तो रखेगा तो। और जैसे सेम चीज अगर मेचू का साइड में जहाँ बहुत ठंडा बर्फ पड़ता है तो उसमें हम लोग दिखाएंगे पूरा बंद करके थोड़ा से आपका जैसे कि आपने मैंने बोला 10 से 12 feet लंबा है, तो वॉल को पूरा बंद करके हार्डली आप 1 feet से ऊपर में आप थोड़ा ये कर दीजिए वेंटिलेशन के हवा जाने का जगह छोटी।
1: अच्छा, फ्लोरिंग तो वैसा ही रखना
0: है। क्योंकि फ्लोरिंग को हमने देखा है कि वुड करने से क्या होता है, वुड जल्दी खराब हो जाता है, फिर आप मिट्टी में करने से कभी जल्दी डैमेज आ जाता है। तो आदमी का जैसे उसको अगर वो लगता है कि एफोर्ड नहीं कर सकते तो वुड से भी कर सकते हैं, बेम्बू से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि सीमेंट अच्छा रहता है, लास्टिंग करता है।
1: तो भूसा जिसमें उनका मल ये सब जाता है तो उसे कितनी बार चेंज करें या फिर क्या देखे चेंज करें, कब समय आ गया है कि चेंज करें?
0: मैडम ऐसे है कि हमें एक आपको मैं थंबल बताऊंगा कि किसानों के लिए, क्योंकि मेट्रो से कोई टाइम ही नहीं होता है कि आपको सिंपल से जब भी आप सवेरे जाएंगे आप वो जो जहाँ पर वो भूसा पकड़ा उसको आप अपने हाथ से पकड़ के देखिए, पकड़ने के बाद आप छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद अगर वो निकल जाता है वो ठीक है।
1: अच्छा,
0: अगर आप उसको पकड़ने के बाद आप दबाने के बाद में वैसे लड्डू टाइप का बन जाता है, मतलब उसमें पानी है।
1: अच्छा,
0: तब आप समझने कि हमें और भूसा डालना है, वही एक थंबरूल होता है।
1: अच्छा,
0: नहीं तो अगर थोड़ा बीच में थोड़ा ज्यादा भूसा हो गया बोलने से बीच बीच में थोड़ा सा चूना लाइम बोलते हैं ना, लाइम को आप छिड़क देने से तो आपका वो कुछ बीमारी से भी उसका छुटकारा मिल जाता है।
1: अच्छा, तो आप जाते आगे बढ़ते हैं और फीडिंग के बारे में बात करते हैं कि खाना किस तरह से दाना किस तरह से।
0: ये सबसे अच्छी बात है, ये हमारा वन राजा बर्ड के लिए फीडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आपको ब्रॉयलर में करना पड़ता है। यूजुअली कहा जाता है कि बोलता है कि उसको खुला छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि क्योंकि ये जो वैरायटी है इसको इनिशियल जैसे बच्चे में जैसे हमारे आदमी भी होते हैं बच्चे से जब हमारा इनिशियल 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले में थोड़ा सा आपको रेशन देना पड़ेगा, वो देना क्यों

0: पड़ेंगे, वो देने से क्या होता है, ग्रोथ अच्छा होता है. उसका वजह से कि मैं बता रहा हूँ, एक महीना हो गया आपने आज एक तारीख को लेके, एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ, दिसंबर एक तारीख को लेके आया है, तो दिसंबर एक तारीख से लेके दिसंबर सात तारीख तक तो आप उसको थोड़ा सा दाना दीजिए, जो हमारा स्टार्टर रेशन मिलता है, जो ब्रॉयलर को दिया जाता है.
1: अच्छा.
0: तो उसको आप जैसे कि 50 ग्राम या 20 ग्राम एक पार्ट के हिसाब से, 20-50 ग्राम के हिसाब में आप दे सकते हैं. तो आप एक हफ्ता जैसे कि एक तारीख से ले आपने सात तारीख तक इसने दिया है, सात तारीख के बाद से 14 डेज ना, 14 डेज तक आप क्या करना है कि जो आपने सपोज 20 ग्राम दिया आप 10 ग्राम कर दीजिए. फिर आप 10 ग्राम एग्जाम्पल में बता रहा
1: हूँ,
0: आप घर का जो दाना वाना जो भी आपका ब्रोकन राइस जो घर का छोटा गुरा गुरा दाना दे सकते हैं, आप दे सकते हैं एक हफ्ता. फिर लास्ट जो 7 to 14, फिर 14 टू जो लास्ट डे है उसमें आप क्या करना है, ग्रेजुअली वो दाना को छोड़ दीजिए जो आपने घर का क्या बोलते हैं बाजार के दाना, आप जो घर का दाना दे सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडाप्टेशन.
1: अच्छा अच्छा. शुरुआत में कुछ अलग से देना है फिर उसे चेंज करना है आगे जाके.
0: सडनली किसानों के डायरेक्ट लाने के बाद चावल देने कभी डायरिया हो जाता है, कभी कभी ग्रोथ भी अच्छा नहीं होता.
1: हाँ हाँ.
0: होता भी है.
1: अच्छा.
0: लेकिन हमने देखा इसमें थोड़ा उसका ग्रोथ रेट अच्छा होता है.
1: अच्छा. तो ये दाना जो लेकिन उनके लिए स्पेशली बना है तो आप लोगों से ले वो दाना?
0: नहीं मैडम, ये दाना अवेलेबल है.
1: अवेलेबल.
0: हाँ, इसमें अच्छा, हमारा अच्छा. एक सिस्टम है कि दाना, क्योंकि आईसीआर बना कोई इंस्टीट्यूट फिलहाल अभी दाना तो नहीं बना रहे, लेकिन आप कमर्शियली एनी आप शॉप में मिल सकते हैं. उसका रेशन होता है जैसे की दाना कैसे है, प्री स्टार्टर, स्टार्टर, ग्रोवर, फिनिशर, चार रेशन होते हैं मुर्गी का, जो भी मुर्गी पालना है आपको. तो प्री स्टार्टर रेशन में ये कहा जाता है कि उसमें प्रोटीन कंटेंट जाता है, तो इसलिए हम बच्चे में भी जब छोटा हो तो हाई प्रोटीन कंटेंट डाइट देते हैं, वैसे वही कॉन्सेप्ट है.
1: अच्छा, अच्छा.
0: फिर उसका स्टार्टर है, फिर ग्रोवर है, फिर फिनिशर है. तो ये कमर्शियल सिस्टम ऑफ फीडिंग है, जिसको हम अभी तो डिस्कस नहीं करेंगे.
1: जी, जी.
0: अभी हम पर्टिकुलर वन राजा में बताने जा रहे हैं. वन राजा में प्री स्टार्टर या स्टार्टर रेशन एक हफ्ता देने के बाद में आपका घर का जो चावल या घर का जो बासी है आप दे सकते हैं.
1: अच्छा.
0: उसके बाद में हम ये दे सकते हैं कब देना है कि आप एग्जाम्पल आप वन राजा पाल रहे हैं, अब दिन आप जैसे कि एक तारीख को लगेगा तो सात तारीख तक आप घर में रखिए, तो आप ऑलमोस्ट 1 month तक घर में पाल लीजिए बच्चा के, क्योंकि वो थोड़ा समय लगता है. जैसे आपने 1 month हो गया और आपको घर का दाना खाने शुरू कर दो, आप खुला छोड़ सकते हैं. जैसे कि सवेरे 7 बजे आप घर से छोड़ दिया, दिन भर वो घूमते रहेगा, 3 बजे वो ये कर लेगा, आप घर में लेके आए. उसमें एक ये इश्यू होता है कि यूजली किसान हम बोलते हैं खुला छोड़ दीजिए, तो खुला छोड़ देते हैं क्योंकि ये फॉरेस्ट ईटर है, मतलब ये बहुत जल्दी खाता है ना. तो अगर आप खेती बाड़ी है तो वो कभी डैमेज कर सकता है खुला छोड़ दिया, तो इसलिए आप जब जहां पालेगा थोड़ा सा फेंसिंग टाइप का या बेम्बू का कुछ लगा देने से ये हो सकता है. तो ये रहा आपका फीडिंग का.
1: जी जी.
0: तो फीडिंग का सेकंड इम्पोर्टेंट है जब अंडा प्रोडक्शन करेंगे. जिसकी मुर्गी जो हमारा वन राजा का आपने पहले बताया
1: जी.
0: आपका जो मीट प्रोडक्शन है ना, जिसे हम ब्रॉयलर सबसे बेस्ट है, ब्रॉयलर को होने के लिए आपको लगभग 6 to 8 weeks बोलते हैं, मतलब 1.5 महीने में हम लोग ब्रॉयलर 1 kilo हो जाते हैं. लेकिन लोकल मुर्गी लगता है 1 साल 1.5 से 1 kilo होने के लिए, वन राजा लगता है लगभग 2 महीने लगते हैं. तो ये 2 महीना, जब 2 महीना में क्या होता है कि वो 1.5 kilo हो जाता है. तो आप अगर सिर्फ मीट के लिए पालेंगे तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे मीट में पाल के फायदा नहीं, मुझे अंडे प्रोडक्शन करना है, मैं तो अंडा है
1: जी.
0: तो अंडा ये शुरू करेगा 6 महीने का से अंडा प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. तो 6 महीने से होते होते होते आप प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा. तो 6 महीने से होके आपका लगभग 12 महीना, 6 महीने में जब शुरुआत होगा फिर 12 महीने बहुत एक प्रोडक्शन होगा, अंडा प्रोडक्शन होगा. तो अंडा का ये खासियत है कि ये अंडा आपका लोकल मुर्गी का एकदम डबल देगा. जैसे हमने खुद देखा अपने फार्म में.
1: अच्छा.
0: किताब का किताबों में लिखा हुआ है 120-130 एग्स पर एनम, एक साल में 120 एग देता है.
1: अच्छा.
0: हमने देखा 105-110 देता है. तो आपका लोकल सिर्फ 40-50 होता है, ऑलमोस्ट डबल है ना.
1: जी जी.
0: तो डबल मतलब कि आप घर में भी खाएगा बच जाएगा,
1: उसको बेच भी सकते हैं.
0: और ये लोकल एक जैसे ही है, एक का दाम 10 रुपए में सेल करने काफी पैसा मिलता है.
1: अच्छा.
0: जो हमने जब फार्मर फील्ड में ट्राई किया था, तो बासर में एक दो किसान है जिसने करके मुझे बताया था कि मैंने पता नहीं बोला कि मैं ऐसे अंडा सेल सेल करके मैंने गाय ले लिया, पता नहीं ऐसे भी कहानी है.
1: अच्छा अच्छा अच्छा.
0: सो उस हिसाब से एक प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है. मैडम जैसे कि लास्ट तो मैंने बता दिया ब्रीडिंग ना, ब्रीडिंग में चुकी है, इसलिए एनी लाइफ स्टॉक में या पोल्ट्री में कहते हैं कि कितना बर्ड रखना चाहिए कलर की. तो किताबों में बताया है कि एक लड़का 10 मुर्गी के लिए होता है, सुअर में भी ऐसे होता है. लेकिन हमने देखा है कि फार्मर्स फील्ड कंडीशन में या किसानों का खेती में या किसानों का घर में 1 लड़का 5 लड़के के लिए काफी होता है. तो हम वो रेशियो मेंटेन करना चाहिए, 1 मुर्गा 5 मुर्गी, तो 10 मुर्गी

0: होने से 2 मुर्गा ऐसा में से आपका रेशियो मेंटेन होता है। और आप जैसे कि आप मैंने बताया अगर आपको सेल करना है कि आपको सेल करना है बोलने से आप मुर्गा को आप सेल कर सकते हैं मुर्गी को रखे
1: अच्छा।
0: तो दूसरा मुर्गा लेके ताकि उसमें इनब्रीडिंग बोलते हैं ना कि इनब्रीडिंग ना हो जाए क्रॉस ब्रीडिंग मतलब जैसे कि अपने अपने में ना हो जाए बाहर के साथ ताकि उसमें क्वालिटी ऑफ एक का जो क्वालिटी मेंटेन हो
1: अच्छा, अच्छा।
0: वो हम मेंटेन करते हैं
1: जी जी।
0: और चौथा है कि अभी आप बोला कि हम वन राजा को कैसे पाले ना तो आईसीएम ने एक टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज कर दिया
1: जी।
0: कि कितना पालना है तो हमने देखा है कि एक किसान को 20 मुर्गी जिसमें होगा 5 लड़का और तीसरी बात है कि आपको हम लोग बोलते हैं उसको कॉस्ट बेनिफिट बोलते हैं जैसे 1 रुपया दान से कितना पैसा वापस रिटर्न मिलते हैं तो पाया गया है कि 1 रुपया दान से आपको ऑलमोस्ट 1 रुपया नॉर्मल ऑलमोस्ट लगभग 2 रुपया का फायदा मिल जाता है। हम नहीं बोलेंगे डबल है अगर आप और एफिशिएंसी कर सकते हैं तो डबल कर सकते हैं तो इसमें आपका किसी एंगल में लॉस नहीं है।
1: तो अंडे की क्वालिटी क्या ये जो ऑर्गेनिक कहें इसे क्या
0: कहें जस्ट लाइक योर लोकल एग जैसे ही है। इसका खासियत है इसका एक साइज बहुत बड़ा है जैसे हमने वजन किया था लोकल एग का 40 ग्राम होगा इसका 50-55 ग्राम होता है तो साइज भी बड़ा है कलर भी ब्राउन से लेक है
1: जी जी।
0: और आपका जैसे कि आप लोकल मुर्गी से पालेंगे सेम चीज ही होगा।
1: अच्छा अच्छा तो वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरत है तो इसके बारे में कुछ बताइए जी।
0: वैक्सीनेशन इज मैं कहूंगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो भी लाइफ स्टॉक या मुर्गी पालन या जो भी आप करना चाहिए
1: अच्छा, अच्छा।
0: वो जरूरी है चाहे आपके देसी मुर्गी हो या वनराजा टाइप का वैरायटी हो तो हमें वैक्सीनेट करना मस्त है। जैसे वनराजा के लिए हमने जो रिकमेंड किया गया है वैक्सीन जैसे कि जैसे बच्चे अंडा से वो चूजा निकला है
1: जी।
0: तो हम निकालने के एक दिन में मरे बल्कि वैक्सीन देना पड़ता है वो यूजली अगर जो फार्म से लेके वो लोग देखे रख ही देते हैं लेकिन जैसे कि एक तारीख को आपने भी बताया एक तारीख का मुर्गी लेके आए तो 4 तारीख को आपको एक वैक्सीन देना पड़ेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रानी खेत या उसको बोलते हैं F1 बोलते हैं ये वैक्सीन इस मस्त चाहे वन राजा हो जो भी वैरायटी हो लोकल बर्ड है ये के लिए जरूरी है। फिर जैसे आप 4 तारीख को अपने वैक्सीन दे दिया फिर आपको 15-20 तारीख में एक IBD बोल के वैक्सीन मिलता है घुमरो
1: अच्छा।
0: वो वैक्सीन अवेलेबल है बाजार में तो वैक्सीन आपको देना पड़ता है वो देने का ढंग भी बहुत सिंपल है हमने काफी बाजार में हमारा अभी कॉन्सेप्ट वही है कि हम हर जगह जा नहीं सकते हैं तो हम क्या करते हैं कि बस्ती में जाके जहाँ पे जो लड़के यूथ है
1: जी जी।
0: तो उसको हम सिखाते हैं वैक्सीन देने का ढंग
1: जी
0: सिंपल से जिस तरह से आप पोलियो ड्रॉप देते हैं वैसे ही आपको आंख और नाक में एक ड्रॉप देने से हो जाते हैं तो ये वैक्सीन देना बहुत मस्त है वनराजा के लिए
1: जी।
0: ये बीमारी यही बीमारी है जो आने से ऑलमोस्ट हर पोल्ट्री को अफेक्ट करता है चाहे जो भी बर्ड हो तो ये वैक्सीन को आप जिसमें बोला आप 4 दिन के बाद देना है 15-20 दिन के बाद में एक IBD देना है फिर एक बूस्टर बोलते हैं बूस्टर सेकेंड टाइम ना दोबारा होने के दोबारा एक बार 1 महीने के बाद जैसे आप 4 तारीख को दिया दिसंबर का तो जनवरी 4 तारीख एक बार दे दीजिए उसका F1 वैक्सीन बोलते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: और इसका अच्छा है कि वैक्सीन बहुत सस्ता है इजीली अवेलेबल है तो किसानों के लिए बहुत सस्ता वैक्सीन है और अवेलेबल है
1: जी। तो ये चीज जो वनराजा जो किस्म है जो आप लोगों ने 2011 को स्टार्ट किया था शुरू किया था तो अभी अरुणाचल में कितने लोग वनराजा पाल रहे हैं फॉर कमर्शियल पर्पस।
0: अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो अभी एक्चुअली इसलिए मैं बता रहा हूँ वनराजा जो हमने 2011 में शुरू किया गया था तो बासर में काफी फार्मर ने अडॉप्ट किया है तो कमर्शियल पर्पस में वो लोग कुछ बासर टाउन में किया गया है और हमने आपका पासीघाट में भी दिया था तो हमने देखा है कि उसका जो एबिलिटी है ना एक्चुअली क्या है कि एक्सेबिलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन चीज ऐसे हुई कि अभी फार्मर्स लोग हैं कि हर चीज नया को ट्राई करने की कोशिश करते हैं उसमें कभी कभी फेलियर हो जाते हैं लेकिन इन नटसेल हम बसार में बसार जहां पर हमारा विसिनिटी है वहां पे वनराजा इज वेरी पॉपुलर हाईली डिमांडेबल जो कभी हम भी सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम नए मैंने सुना हूँ नए वैरायटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर जैसे कि क्रॉयलर है कड़कनाथ बोल के आप सुना होगा कड़कनाथ बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन आपका एडेप्टेबल सबसे इम्पोर्टेंट होता है एडेप्टेबल वाइज तो वनराजा सक्सेसफुल है एडेप्टेबल है
1: जी,
0: और इजिली अवेलेबल भी है
1: जी, जी। बहुत ठंडा जगह कहो या फिर आप बोल लीजिए कि या फिर गर्मी वाली जगह सब जगह अडेप्टेबल है वनराजा तो काफी फायदेमंद होगा किसान अगर उसे पाले तो
0: हाँ, काफी फायदेमंद
1: जी
0: है।
1: जी अंडे भी अच्छे से देते हैं जी और
0: बाद में इसका मैंने जैसे बताया इसका एडवांटेज हर चीज का एक एडवांटेज होता है कि इसलिए हर चीज का प्रो एंड कॉन्स बोलते हैं तो वनराजा का एक एडवांटेज तो मैं बताया डिसएडवांटेज जो छोटा सा

0: जी जी
1: वो भी जानना चाहिए किसान भाइयों कि ये जो वैरायटी है ये अच्छा मादा नहीं है, मतलब गुड ब्रूडर ना, ब्रूडर बोलते हैं
0: okay, okay.
1: तो वो बच्चा प्रोड्यूस करते हैं, हैचिंग करते हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं है
0: जी.
1: उसके लिए उसका एक थोड़ा सा डीमेरिट है. तो हम लोग क्या करते हैं किसान भाइयों बहनों के बीच में, जैसे कि कोई बर्ड्स मिलने से, अंडा देने से, हम लोकल बर्ड्स के साथ ब्रूडिंग करा देते हैं, ब्रूडिंग बोलते हैं. जैसे कि एक मादा, लोकल मादा छह अंडा देने चार बच्चा पैदा कर सकते हैं. और दूसरा है कि ये थोड़ा काफी ह्यूज होता है, जैसे कि जब ये मेच्योर हो जाता है, मैंने बताया एक बार, जब मेच्योर हो जाता है
0: जी.
1: तो मैंने देखा कोई कोई लड़का हमारा ये किसान भाइयों का घर में 2 किलो 800 ग्राम 3 किलो तक तो पहुंच जाते हैं. तो काफी वजन होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि ये इजिली बस चोरी हो जाते हैं. वन ऑफ द रीजन ना, चोरी हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहता है, या आप जैसे कि कुत्ता का शिकार हो जाता है, वो ध्यान देना पड़ता है,
0: भाग नहीं पाते.
1: और दूसरी बात है कि इसमें एक चीज है कि जब जब ज्यादा बड़ा हो जाते हैं, कभी क्या होता है कि अगर फार्मर्स या किसान अगर ठीक से उसको खाना पीना नहीं देने से, वो क्या है, एक दूसरे को मारता है, तो मारने से इंजोरी हो जाता है, वो फाइट भी करते हैं बीच में. तो उस चीज को ध्यान देना चाहिए. एक है कि आपको जब आप पालेंगे तो अंडा प्रोडक्शन होने समय आप थोड़ा से लोकल बर्ड से आप रेयर कीजिए, ताकि वो अंडा के लिए
0: अच्छा साथ में
1: ना, ताकि वो रेयर करने के जब बच्चा निकलेगा वो भी खुद करेगा, लोकल बर्ड से भी अंडा बच्चा निकल जाएगा. बाकी वो चीज को छोड़ के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं
0: जी. आपने जो पहले एक समस्या बताई थी कि सबसे पहले कि एक अच्छा मादा नहीं होता है, तो उसने क्या सोल्यूशन है, क्या करे, क्या समाधान कुछ है कि किस तरह से ऐसा होने ना दे?
1: नहीं होता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जहां तक मैंने देखा है कि जैसे हमारे लोकल बर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर आपने 6-8 अंडा दे दिया तो वहां से 6 बच्चे निकल जाते हैं. लेकिन वन राजा में वो थोड़ा कम होता है एफिकेसी, उसको बोलते हैं. तो जैसे कि आपने 8 लगा ले तो 4 निकले. मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं होता है, होता है
0: जी.
1: लेकिन वो कम, आपका लोकल बर्ड से थोड़ा कम होता है. तो उसका सोल्यूशन वही है कि आप भी लोकल बर्ड से पालिए, किसी के पास में आपका अंडा बहुत निकलेगा. तो वो लोकल बर्ड से किसी का जो घर में पाल रहे हैं आप, जैसे आप 6 दे दिया या 4 दे दिया, तो आप बोलिए बच्चा निकले वहां से, आप तो रख लिए, 2 में रख लूंगा. इस तरह से आप वो चेन सिस्टम को आप मेंटेन कर सकते हैं
0: जी. इसे और आगे प्रमोट करने के लिए वन राजा, जैसे कि आपने बताया कि बासर में ज्यादा काफी पॉपुलर है, काफी डिमांड में है, तो बाकी जगहों पे और इसे प्रमोट करने के लिए आप लोग और क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या कुछ फैसिलिटी वगैरह है, सुविधाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से?
1: मैडम एक्चुअली ICR जो इंस्टीट्यूट है, पर्टिकुलरली हम लोग रिसर्च विंग
0: जी जी.
1: तो हमारा जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट से कोई डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का स्कीम तो नहीं रहता, लेकिन हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम बोलते हैं ट्रेवल सब प्लान. तो वो ट्रेवल सब प्लान में होता है कि हम कुछ वैरायटी ऑलरेडी जो हम टेस्ट कर चुका है, और जैसे मैं बताया वन राजा टाइप का जो हमने कर चुका है, उसको हम लोग फादर उसको प्रोवोकेट करने के लिए, फैलाने के लिए, मतलब पॉपुलराइज करने के लिए तो हम लोग करते हैं. तो फिलहाल अभी हमारा बहुत से डिस्ट्रिक्ट में हमने किया, मैं बताया आपको, इज नॉट ओनली इन बसार. हमने जैसे कि हमारा केवी के 4 केवी के लोंगबिंग है, केवी का अंजाव है, केवी के नमसा है, केवी के वेस्टियांग है. वेस्टियांग अभी तक स्टार्टिंग फ्रॉम लीगावली तक वो जो पेपुरान है, वेस्टियांग है, वो हमारा न्यूट्रिशन में आते हैं. तो जहां जहां हमारे केवी केस है वहां पे ऑलरेडी हम प्रमोट कर रहे हैं. और सिमिलरली जैसे कि कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि जब कोई स्टेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हमें बुलाते हैं, पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, की वहां पर कुछ आई से रिलेटेड प्रोग्राम होने से, तब हम वहां पे ट्रेनिंग देते हैं. और ट्रेनिंग के साथ में अगर किसान को डिमांड है कि वो करना चाहते हैं, तब हम एक बार रिक्वेस्ट करते हैं अगर आप हमारे फार्म आ जाइए, क्योंकि वहां देना वो बताना अलग होता है. तो हमारा अगर बसर में आके देखने के बाद में आप फिर फर्दर आप इंटरेस्टेड है तो हम उसको ये लाइजनिंग कर देते हैं. लाइजनिंग जैसे होता है कि हमने बताया ICR नागालैंड सेंटर है, वो सिर्फ वन राजा चिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फार्मर्स के लिए.
0: अच्छा.
1: तो वहां से वो जितना आपको बर्ड्स चाहिए, कितना चिक्स चाहिए आप ले सकते हैं.
0: अच्छा अच्छा.
1: आपको जो अंडा में ले जाना है, फिर बर्ड्स में ले जाना है. और जैसे कि हम ICR क्या करते हैं, कभी कभी हमारे पास बर्ड्स होने से तब हम कभी कभी फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विद सम पोल्ट्री बर्ड्स के साथ में, फीड्स के साथ में, मेडिसिन के साथ में, ताकि वो एटलीस्ट ट्राई कर सके कि होता है कि नहीं होता.
0: हाँ हाँ. तो जो किसान पालना चाहेंगे वो जो अंडा हो या फिर वो सीधे मुर्गी के लिए हो, मुर्गा के लिए हो, तो वो कहाँ जाए आपके पास, आपको कांटेक्ट कैसे करें?
1: एक तो सबसे इजीएस्ट वे है, अगर पर्टिकुलर ईस्ट साइड का आपका नियरेस्ट टू नागालैंड, जैसे कि हमारा पवन परे पहल का है, तो वो लोग नागालैंड सेंटर, ICR नागालैंड सेंटर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.
0: अच्छा अच्छा.
1: और अगर हमारे ईस्ट साइड का, वेस्ट साइड का, वो

0: आईसीआर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो हम लाइजनिंग करते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: इसमें कोई इश्यू नहीं है।
1: अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर क्या कुछ जरूरी है जो आप लोग इससे मतलब अगर लेना चाहेंगे तो क्या कुछ सबमिट करना पड़ेगा किसानों को?
0: फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये होता है कि आजकल आईसीआर चाहते हैं कि इंदौर को पॉपुलराइज कर लेते हैं कि आपका कोई एनजीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी है, कि हम एक इंडिविजुअल को नहीं देते
1: जी जी,
0: क्योंकि हम मास को देते हैं तो ताकि मास में पॉपुलराइज हो, क्योंकि यहाँ तो ऐसा इंडिविजुअल बेनिफिट हो जाता है। तो आपका कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओ है, वो हमारा ज्वाइंट डायरेक्टर सर को एक लेटर लिख देने से कि हम जो भी मुर्गी के बारे में, वनराजा के बारे में या रिलेटेड टू एग्रीकल्चर के बारे में कुछ हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं और आप कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं, उस बेसिस में हमारा जो जॉइंट डायरेक्टर सर है तो उसको रेस्पॉन्स देंगे। तो रेस्पॉन्स देने के बाद में हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम एवरनेस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि किसको कैसे देना है, कहाँ देना है।
1: अच्छा अच्छा,
0: वो सिस्टम होते हैं।
1: तो सर आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इस वनराजा बैकयार्ड जो किस्म है उसके बारे में, जो बैकयार्ड पोल्ट्री के को लेकर कुछ संदेश दें।
0: हमारे किसान भाइयों बहनों, हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि जो हमारा ये वैरायटी है वनराजा, आप जरूर उसको आप अपने खेतों में ट्राई करके देखिए। ये वैरायटी जो है आपका जो अंडा प्रोडक्शन, अंडे और मीट प्रोडक्शन में आपके लोकल देसी पार्ट से ऑलमोस्ट डबल होंगे, और इसमें कुछ कुछ जो भी कुछ प्रॉब्लम होने से, या कुछ प्रॉब्लम तो होता है जब शुरुआत करते हैं, तो हमारा आईसीआर बसार और कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में है, आप वो लोग से कॉन्टेक्ट कीजिए।
1: आज के कृषि जगत में बस इतना ही। ये थे हमारे साथ डॉक्टर धोनी जैन, सीनियर साइंटिस्ट वेटरनरी एक्सटेंशन आईसीएआर बसार अरुणाचल प्रदेश, और ये हमें जानकारी दे रहे थे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत वनराजा वैरायटी के बारे में। इसी के साथ ही मुझे केन्यूम आंगो को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

रांगीनासीदाता लेरिम किसानवाणी का आईसीएआर पसर कक्षिंडुक पर डॉक्टर धोनी जीनी तंब खास होतंकोर कमेरा सुधी आकाशवाणी ईटानगर के रिले सन नवंबर पेनाशे कंडेंजुगन आकाशवाणी ईटानगर पीकी रिलुम हिम्बर रांगीनाओ दंबचे लेरिम किसानवाणी चितुस उच्च आकाशवाणी तवांग हिम्बर रांगीना सामुनुप्तिक थुजे ग्रोकनिंग कर्म खेलीची होनी रांगीना दा देशिक लेरिम से राजित कोचुदुर Langina also dish no declarim detaining to say, ignore clarim into the course and nasa. Langina na dish no declarim detaining to the course and nasa. That is it take to the groaning carmichael genisje, lerim jaroka. Dish no to the groaning carmichael bliche. Shedon lerima. Lamaluntin nurbu. Shakan si Christonu. Chandrezik, lamininger, San Metoimbur. To the nisje, Hindiga singer, to the nisikin carmel langaje. Injiga singer, Akashwani Dilika Relias and Metoimbur. Let him swash the churcha, Tishno Susani Sikin Karmichiche. Susani Sikin Karmakalichiche, let him Saj or Awaj. Tishno Susani Sikin Karmakane Langache. Hindiga singer, Susani Sikin Karmakane Chiche. Injiga singer, Akashwani Itanaka Relias and Metoimbur. Tishnup to the Nisikning, Karmakane Chilenche, let him dish bakti git, ka fana, Hindi film, Giante Pasamati Mahalakshmi Ayer, Signoru, San Metoimbur. To the getche, let him purane Hindi filmi git, Galhangi etanvasi, WhatsApp gui, Yaks, Tugdenango, Hindi film, Ningpa.

0: एक सवाल पूछूं, अगर कल कोई आपके डिस्ट्रिक्ट घूमने आए तो आप उसे सबसे पहले कहाँ ले जाएं?
1: सोचिए, मैं किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जो सिर्फ आपकी लिए खास है। शायद वो आपका फेवरेट सनसेट पॉइंट, या फिर वो स्वाद वाला एड्रेस या बचपन वाली गली, या फिर कोई ऐसा मेला जिसके बारे में बाहर के लोग कम ही जानते हैं। बस यही तो आपकी कहानी है और इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया। अपने डिस्ट्रिक्ट की कहानी रिकॉर्ड कीजिए और दिखाइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया जेम छुपा है।
0: तो इंतजार किस बात का? जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाइए और माई वेब पे अपलोड कीजिए और आप भी जीत सकते हैं 5 लाख, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास है कई कहानी।
2: मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:39 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के तहत चलिए हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। श्रोताओं, पहले जानिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर यानी संध्या के 6:47 पर शेदुन निगम के तहत सुनिए स्वर्गीय लामा लुंतेन नुब और साथियों से चंद्रजीत लामे मंजूर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी समाचार आज शाम 7 बजे, तत्पश्चात 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। स्वास्थ्य से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा आज शाम 7:10 पर, जिसके तहत आप सुन पाएंगे खंडरों जुवा जंगलों जिला अस्पताल तावंग के चिकित्सक डॉक्टर तंजन कुंगा से रक्तदान विषय पर हुए एक साक्षात्कार। आज शाम 7:30 पर सुर और धुनों के साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज के तहत आनंद लीजिए जोधा अकबर और याराना फिल्मों से दो गीतों के साज और आवाज का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार आज शाम 7:45 पर, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। 7:55 पर कार्यक्रम को में तराने के तहत आनंद लीजिए फनी फिल्म से महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में एक देशभक्ति गीत का। श्रोताओं, आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत आज रात्रि 8 बजे, जिसमें शामिल है उम्मीद, आराधना और चरस फिल्मों से चंद सदाबहार नगमे। आज रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन आज रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। आज रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:16 पर आज के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, ये तो रहे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। चलिए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 4 अक्टूबर 2026 के दिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2 बजे।

दिल्ली से अनुप्रसारित मिड डे न्यूज के साथ तत्पश्चात आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार 2:15 पर। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीतों के दैनिक कार्यक्रम वंदना के तहत सुनिए लमा करसम और साथियों से चंद बौद्ध भक्ति गीत। विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के तहत आनंद लीजिए चंद भुवन गीतों का संजय मैफी और साथियों के आवाजों में कल दोपहर 3:00। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात के तहत सुनिए पीएम श्री जेएनवी तावंग के 11वीं कक्षा के छात्रा दिकी हानू से जलवायु परिवर्तन का प्रकृति समुदाय पर प्रभाव विषय पर उनके विचार। कल दोपहर 3:33 पर महिलाओं पर केंद्रित नगमों के कार्यक्रम नारी संगीत के तहत सुनिए चकते इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई, हिचकी फिल्म से अर्षित सिंह, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर, ओम शांति ओम फिल्म से के लेडीज वर्सेस रिकी भाल फिल्म से शिल्पा राव, वीर जारा फिल्म से लता मंगेशकर तथा टाइगर जिंदा है फिल्म से ज्योति नारायण की आवाजों में चंद नगमों का। साप्ताहिक कार्यक्रम महिला जगत कल शाम 4:00 इसके तहत सुनिए खंडवा डूबा जंगलों जिला अस्पताल तावंग के ICTC डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के काउंसलर मिस टुंडुक डोरमा से HIV एड्स विषय पर हुए एक साक्षात्कार। श्रोताओं कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 4:45 पर तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कल शाम 5:00 दैनिक मनपा कार्यक्रम मंथन लेरम के तहत सुनिए देशी थुप्तम जंगम द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय उपन्यास खंडरोड़वा जंगमों का 11वां भाग। श्री कुंचो संगे की से दैनिक मुख्य सूचना मनपा में कल शाम 5:30 पर। कल शाम 5:35 पर साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम रिक्षण वेरम के तहत सुनिए तवंग मठ के भूतपूर्व लोपन लामा नवन नोबो से पैदल के निकट स्थित धर्मबुंगे गुंपा की स्थापना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक वार्ता। कल शाम 6:00 लेरम सेरा 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:20 पर शेदुम लेरम के तहत सुनिए तवंग मठ के भूतपूर्व फ्लोपन लामा नवन नोबो से पैदल बस्ती के निकट स्थित धर्मबुंगे गुंपा की स्थापना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर वार्ता का शेष भाग। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार कल शाम 7:00 तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर साप्ताहिक कार्यक्रम महफिल कवाली के तहत आनंद लीजिए दिल्ली सिक्स और फिजा फिल्मों से दो कवालियों का। साप्ताहिक कार्यक्रम सामुदायिक गीत एवं गीत पाठ कल शाम 7:25 पर जिसके तहत आप सुन सकेंगे कानू घोष और नलिनी द्वारा उर्दू भाषा में सारे जहां से अच्छा गीत का पाठ। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार कल शाम 7:45 पर तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत के तहत आनंद लीजिए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम और कैलाश खेर की आवाजों में एक देशभक्ति गीत का। आपकी व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित सदाबहार नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत कल रात्रि 8:00 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9:00 न्यूज एट 9। कल रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से अगले दिन प्रसारित होने वाले चंद कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण के साथ रात्रि 9:00

पर 16 मिनट पर कल के तमाम कार्यक्रम समाप्त होंगे। श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। इन्हीं कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के साथ कार्यक्रम जरोखा यहीं समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:47 हुए हैं। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम जेदुन लेरिम सुनिए चंद ही पलों में। कृपया हमारे साथ बने रहें।

उच आकाशवाणी तवांगिम्बुर हांगे चाम देशिक शेदन लेरिम चित कोचुदुर हांगे ना देशुद लेरिमा लामा लुंगतेन दुर्बु शाकन सि ख्रिस्तोनु चंद्रजिक लामिन निंजुर संदांसा

디지 다동도 바 공바도 바 난지르 조지 마란지 저라 딘지르 밀르 동와 담니 에네 외제 유리 든당 군지

Bezemavide

dans la longue

0: 那座对戒干戒戒松瓦当戒各座雷耶若罗摩萨悉扬索若罗维耶坚昆心应当这边尼列隆多悉皆蒙德扎维恩多那卓昆南地维无尽玛多小僧耶瓦玛密歇耶摩卓修灭多吉吉拉丹多瑞南瓜拉列杰吉当吉尤罗昆吉尊拉拉灭扎灭杰森昆桑吉卓亚诺扬卓念卓昆顿多作将多吉隆萨悉不吉就
1: Langi nasi data shedon lirima lamulungten darbu shakansi kristonu chandrasek laminenjur sanambur langi nau dambaje akashwani tawang teshnup tikmon pak lirima na chasang dos uts akashwani tawang imbur langi changmujuk bu lirim hindi ga singur chuzenisje chuzenisikning karmelenga che inji ga singur akashwani dilli ke rilea sanang sa
0: Yidha manguru rena manje la gandir yanda ya miye jizun la miye duke riye Diji nange vesara yunpande rangi jivara shuwan diju jang Chodin vizhu malin dobar yuru chardan yungi diwa malin Shikyura manula landana jinjanji rajama yogi bumbu ngayi
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक अवसंरचना निवेश बैंकिंग सुधार बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12,22,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और वर्ष 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
2: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह

0: नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीय नागरिकों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ईरान विवाद समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम की कीमतें कम हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण, 97 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता। वहीं अंतिम पंघाल ने महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 352 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mr. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the 4 Labour Codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
2: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
1: The finance minister said that the IMF projects India's general government debt to decline from 83.4% of GDP in 2026 to 77.7% in 2031 against a rising global trend. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that the Narendra Modi government is developing a complete ecosystem around cattle rearing, from converting cow dung into biogas and organic fertilizer to processing dairy products and providing market access to give a new boost to the rural economy. Addressing the state-level Gau Palak Sammelan in Bhopal today, Mr. Shah said cattle rearers would be among those benefiting the most from the formation of the Ministry of Cooperation. On criminal justice reforms in the country, the Home Minister said that once the Bharatiya Nyaya Samhita is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Union Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal emphasized the urgent need to strengthen legal aid and child protection mechanisms in cyberspace

0: child safety an integral part of nation building. Speaking at the NALSA South Zone Regional Conference 2026 in Hyderabad, Mr. Meghwal highlighted the rising digital threats facing the youth, including online grooming, child sexual abuse material, deep fakes, and technology-facilitated exploitation. To address these challenges, the minister introduced three foundational dimensions of ease of justice for child protection, ease of understanding, ease of engagement, and ease of working. Delhi Police has said that Section 163 of Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023 is in force in New Delhi District to ensure public safety, public order and smooth traffic movement. In a public notice, DCP New Delhi said that unauthorized gatherings, public speeches, shouting of slogans, processions, demonstrations, dharnas and other specified activities are prohibited. India have won 5 gold, 2 silver and 2 bronze medals at the Asian Games in Japan today. In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend the men's gold, and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. In men's cricket, India won the gold, defeating arch rivals Pakistan in the T20 final. Indian wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57-kilogram gold after edging out North Korea's world champion Chong Song Han 11-7 in the fierce final. Pranavi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in golf, holding her nerve after surrendering a 3-shot overnight lead to clinch the women's individual title. Deepak Punia won bronze in the men's 97-kilogram freestyle wrestling event after defeating Mongolia's Gangkuya Gambatar at Nagoya this afternoon. With these impressive performances, India has climbed to the 4th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 85, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated the Indian men's cricket team on winning the gold medal. Vice President C.P. Radhakrishnan has also congratulated the Indian men's hockey team on winning the gold. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:10 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है स्वास्थ्य से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम के तहत आज सुनिए खंडवे रोवाजम्मू जिला अस्पताल तवांग के डॉक्टर तंजिम कुंगा जी से रक्तदान के महत्व और प्रक्रिया विषय पर हुए एक साक्षात्कार। साक्षात्कार करता है आकाशवाणी तवांग की हिंदी उद्घोषिका दोषी ड्रामा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसे नेक कार्य की जिसमें दिया गया आपका थोड़ा सा समय किसी के जीवन की डोर को थाम सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वैच्छिक रक्तदान की। तो आइए आज इस कार्यक्रम में हम जानते हैं रक्तदान का महत्व, इससे जुड़ी भ्रांतियाँ, इसकी प्रक्रिया, वो भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आमंत्रित किया है खंडवा ड्रोवा संगमो जिला अस्पताल तवांग के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर तेंजिन कुंगा जी को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: थैंक यू, सभी को मेरे ओर से नमस्कार।
2: जी तो डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रक्त का जो महत्व है इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। जैसे शरीर का महत्व हिस्सा है रक्त, आपने कहा, तो किन परिस्थितियों में एक मरीज को रक्त की तत्काल आवश्यकता पड़ सकती है, इस बारे में बताइए।
3: रक्त एक ऐसा चीज है जो फैक्ट्रीज में बनाया नहीं जा सकता।
2: बिल्कुल।
3: और रक्त का आवश्यकता आज का जो सिनेरियो है, आज का जो हालात है, उसमें रक्त का आवश्यकता कभी भी किसी को भी हो सकता है। और जब रक्त किसी को जरूरत पड़ता है तो उसका एक ही तरीका है, वो कोई और उसको डोनेट करे।
2: जी, जी, जी।
3: ब्लड का रिक्वायरमेंट कभी भी पड़ सकता है। सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट पड़ता है वो बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, किसी का सर्जरी होना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ट्रॉमा एक्सीडेंट इमरजेंसीज में कभी भी जरूरत पड़ सकता है। किसी का इमरजेंसी सर्जरी होना है उसमें जरूरत पड़ सकता है।
2: जी, जी।
3: और हमारा हॉस्पिटल में खास करके जो ऑब्स्टेट्रिक्स जो प्रसूति विभाग है उसमें बहुत बार हम लोगों को ब्लड का जरूरत पड़ता है।
2: जी, जी।
3: इसको छोड़ करके हमारे यहाँ डायलिसिस होता है, तो डायलिसिस के सेशंस में वेरी फ्रीक्वेंटली हमें ब्लड का जरूरत पड़ता है। तो ये सब परिस्थितियां हैं जिसमें ब्लड का रिक्वायरमेंट होता
2: है। जी जी डॉक्टर साहब, और अगर हम हमारे तवांग के बारे में चर्चा करें तो इस समय जो है

0: डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तवांग की स्थिति, जो ब्लड बैंक है उसकी परिस्थिति हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि उपलब्धता क्या है, यहाँ के लोग कितने जागरूक है इसको लेकर, यानी रक्तदान को लेकर।
1: हमारा जो ब्लड बैंक है वो फुली फंक्शनल है
0: जी,
1: और हमारे ब्लड बैंक में स्टोरेज कैपेसिटी 350 बैग्स का है। जरूरत पड़ा तो ये कैपेसिटी हम बढ़ा भी सकते हैं, इट कैन गो अप टू 700 बैग्स। चूंकि पॉपुलेशन हमारा इतना नहीं है और रिक्वायरमेंट इतना नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा कलेक्ट करके नहीं रखते हैं, क्योंकि ज्यादा कलेक्ट करके रखेंगे तो हमारा जो वेस्टेज कंपोनेंट है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हम नॉमिनल एक कलेक्शन करके रखते हैं, जब भी किसी को जरूरत होगा तो हम उसका वितरण करते हैं।
0: जैसे कि एक व्यक्ति को रक्तदान करने के लिए उम्र, वजन और उसकी स्वास्थ्य से संबंधित किन बातों का ध्यान रखा जाता है रक्तदान के पहले?
1: कोई भी व्यक्ति 18 से लेकर के 65 इयर्स के बीच में, जिसका वजन 45 किलो से ऊपर हो और जिसका हीमोग्लोबिन 11 से ऊपर हो और जिसको कोई भी बीमारी ना हो, तो वो कभी भी आके ब्लड डोनेट कर सकता है। और ब्लड डोनेशन हर 3 महीने में एक बार आदमी कर सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को बहुत पहले, कुछ 10 साल पहले गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे होंगे, लेकिन अब वो ठीक है बिल्कुल, तो अब वो क्या रक्तदान कर सकते हैं?
1: अगर उसको ब्लड के द्वारा फैलने वाला कोई संक्रमण, इन्फेक्शन ना हो, तो वो दे सकता है।
0: एक रक्तदाता द्वारा रक्त दान किया गया जो है, कितने समय के लिए सुरक्षित है, जैसे कि उसके लिए कोई एक्सपायरी डेट्स होते हैं कि नहीं?
1: नॉर्मली हम 3 महीने तक वो ब्लड को स्टोर करते हैं, उसके बाद में ब्लड फिर हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जो उसका लॉन्जिटिविटी है वो 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स के बाद में उसको हम डिस्कार्ड करते हैं।
0: तो 3 महीने के अंदर अंदर किसी को दान करने की जरूरत पड़े तो कर देते हैं, नहीं तो फिर डिस्पोज कर देते हैं जी। और एक व्यक्ति जो है ब्लड डोनेट के लिए या रक्तदान के लिए आते हैं, तो व्यक्ति जो है एक बार में कितने यूनिट उससे ब्लड डोनेट करवाया जा सकता है?
1: जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास ब्लड डोनेशन के लिए आता है, तो सबसे पहले उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम। उसका ब्लड प्रेशर देखा जाता है, पल्स रेट, वजन सब देखा जाता है। फिर हमारे पास एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, जिसमें अपना स्वेच्छा से अपना हेल्थ का बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन देता है। अगर सब कुछ सही है, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो वेल रेस्टेड है, अच्छे से उसने रेस्ट किया है, कुछ खा करके आया है, जब सब कुछ सही लगेगा फिर हम उसको ब्लड डोनेशन के लिए ले जाते हैं। और एक बार में एक आदमी से 350 ml या 1 यूनिट ही निकाला जाता है।
0: और इसमें जो है पुरुष और महिला के लिए क्या अलग अलग कोई प्रक्रिया है, या फिर महिलाओं के लिए रक्तदान से जुड़ी विशेष सावधानियां हैं इसमें?
1: महिलाओं में चूंकि एनीमिया थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो अनियमित जो महिलाएं हैं उनको हम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन से परहेज करने को बोलते हैं। उसको छोड़ करके अगर किसी महीने स्त्री का महीना चल रहा हो तो उस दौरान हम उससे ब्लड नहीं लेते, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे हम ब्लड नहीं लेते हैं। बाकी कोई भी स्वस्थ महिला, एडल्ट 18 से 65 एज के बीच, जिसको कोई भी ब्लड रिलेटेड संक्रमण ना हो और कोई अदरवाइज कोई बीमारी ना हो, तो उससे हम ब्लड ले सकते हैं।
0: आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे कि हमारे समाज में एक आम सी धारणा है, जैसे रक्तदान के बाद हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है हम ये भी जानना चाहेंगे। और साथ साथ जो कोई भी रक्तदान करने के लिए आगे आना भी चाहते हैं लेकिन ऐसी बातों को सुनकर वो फिर आगे नहीं आते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? हालांकि मैंने कुछ साल पहले रक्तदान की थी लेकिन मुझे तो कोई ऐसी अनुभव नहीं आई, फिर भी आज जो है आप हमारे आकाशवाणी तवा के स्टूडियो में साक्षात आए हैं, तो मैं इस सुनहरा मौका को गंवाना नहीं चाहूंगी। सर,
1: ब्लड डोनेशन के लिए अगर कोई आता है, अगर वो हेल्दी है, वेल रेस्टेड है और मेंटली एकदम प्रिपेयर होके आता है, तो उसको जनरली ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। आफ्टर डोनेशन के बाद में वीकनेस का होना मतलब स्वाभाविक तो नहीं है। इसका कारण ये है कि 350 ml जो ब्लड हम दे रहे हैं वो बहुत ही कम है, तो उससे बॉडी में जो बॉडी का हीमोस्टेसिस है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है जनरली। हाँ, अगर आप ब्लड डोनेशन करते ही एकदम से उठ गए तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चक्कर वक्कर आए, वो सामान्य बात है
0: जी।
1: तो इसलिए हम क्या करते हैं, इमीडिएटली आफ्टर डोनेशन लोगों को एकदम से उठने के लिए मना करते हैं
0: जी।
1: तो इमीडिएटली आफ्टर डोनेशन कुछ टाइम के लिए वो उसी कोच में लेटे रहते हैं और थोड़ा सा रिप्लेसमेंट लिक्विड्स, जैसे कोई जूस पी लिया या थोड़ा सा पानी पी लिया, क्योंकि क्या है, ब्लड जब आप देते हैं तो थोड़ा सा फ्लूइड लॉस हो रहा है बदन से, तो उस फ्लूइड को यदि हम रिप्लेस कर लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, तो इसे 5-10 मिनट का रेस्ट और थोड़ा सा फ्लूइड रिप्लेसमेंट अगर ये करते हैं, तो कमजोरी या चक्कर वक्कर ये सब

0: जाता है। और ये जो कमजोरी वाला बात बोला, ये एक गलत धारणा है जो लोगों में घर करके रखा हुआ है। तो कोई कमजोरी नहीं होता है, ये सिद्ध एक बात है।
1: जी, मैंने इसके जो रक्तदान करने के फायदे तो बहुत सुना, लेकिन जो इसके नुकसान भी होते हैं कई बार कहते हैं, हालांकि आपने अभी इसके बारे में बता भी दिया कि नुकसान नहीं होते, फिर भी फायदे और नुकसान दोनों में आपसे जानना चाहूंगी इस कार्यक्रम में।
0: रक्तदान सबसे बड़ा जो पुण्य एक इंसान अगर कर सकता है तो वो रक्तदान है। जब आदमी रक्तदान करता है तो वो अपना जो ये शरीर है उसका एक हिस्सा किसी को दे रहा है। तो जो एक बार दान करता है उसी को पता होता है कि वो फीलिंग क्या है, किसी को जीवन देना, किसी को अपना जो शरीर है उसका एक अंग देना जैसा
1: जी, जी,
0: है
1: जी।
0: तो ये सबसे पहला बात तो ये है कि फील गुड फैक्टर जो आता है रक्तदान के बाद
1: जी, जी।
0: और दूसरा बात ये है, जो रक्त का आवश्यकता है वो हमेशा बना हुआ है
1: जी, जी।
0: जो आंकड़ा जो कहता है वो ये कहता है कि जो पॉपुलेशन है उसका 1% अगर कोई 1% डोनेशन देता है तो वो पॉपुलेशन का जो नीड्स कवर होता है। तो इसलिए रक्तदान करते रहना चाहिए, क्योंकि रक्तदान करके ही ब्लड बैंक में रक्त होगा किसी के जरूरत के लिए। रहा बात में आपने जो फायदा और नुकसान का जो बात किया है, नुकसान तो बहुत ही कम है
1: जी।
0: लोगों में एक ये धारणा भी है कि रक्तदान करने से इन्फेक्शन हो सकता है। रक्तदान करने से कभी इन्फेक्शन नहीं होता है
1: जी, जी।
0: जो रिसिपियंट है रक्त का, हाँ अगर रक्त को अच्छे से स्क्रीन नहीं किया तो जो रिसिपियंट है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, डोनर को कभी भी इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है। तो ये बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ, डोनर को कभी भी किसी इन्फेक्शन का डर नहीं है
1: जी।
0: और एक बात है, ब्लड डोनेशन करता है उसको और भी बेनिफिट्स है। सबसे पहला बात तो मैंने ये बताया कि दान करने का जो सुख है वो उसको मिलता है। दूसरा बात ये है, अगर नियमित रूप से आप ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे आपको हार्ट और आपको जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको भी प्रोटेक्शन मिलता है
1: जी, जी, जी।
0: और ये भी है कि जो वेट जो रेगुलेशन है वो भी ब्लड डोनेशन करने से वेट रेगुलेट कर सकते हैं। इससे भी अच्छा बात यह है कि कुछ कुछ कैंसर से भी प्रिवेंशन मिलता है ब्लड डोनेशन करने से। तो ब्लड डोनेशन का जो फायदा है वो बहुत ज्यादा है और नुकसान मेरे ख्याल से ना के बराबर
1: जी जी जी। क्योंकि डॉक्टर साहब अक्सर लोग ऐसे कहते हुए फिरते हैं कि नियमित रूप से रक्तदान करने से जो है हमारे शरीर में अपने जो खून है वो कम हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है।
0: एकदम गलत है। नियमित रूप से अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो एक तरह से ये भी सोच सकते हैं कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है बॉडी में वो है 120 दिन 120 डेज। अगर आप 350 ml डोनेट करते हैं, एक तरह से आपका बॉडी जो है वो नया आरबीसी जब बनाता है तो आपका ब्लड जो है वो रिप्लेनिश हो रहा है। तो इसको इस तरह से देखें, ना कि ये सोचे कि आपका ब्लड लॉस हो रहा है
1: जी, जी।
0: आपका ब्लड इनडायरेक्टली रिप्लेनिश हो रहा
1: है जी। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है कि ब्लड डोनेट करने के बाद रक्त की जांच किस प्रकार से की जाती है ताकि जरूरतमंद मरीज को जो है सुरक्षित रक्त मिल सके।
0: ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है
1: जी।
0: एक बार ब्लड जब हम किसी डोनर से लेते हैं तो उसको डायरेक्टली स्टोर करके उसको हम यूज नहीं करते हैं, उसको पहले लैब में टेस्ट करते हैं और टेस्ट भी स्टेट ऑफ द आर्ट जो मशीनरी है उससे टेस्ट करते हैं। इस चीज का बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है कि वो ब्लड पूरी तरह से स्क्रीन्ड हो
1: जी, जी।
0: आपको पता है ब्लड और ब्लड से रिलेटेड बहुत से इन्फेक्शंस हैं, जैसे HIV 1 and 2, आपका HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, मलेरिया, सिफिलिस। तो इन सब जो भी बीमारियां हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से और एलेजा और बाकी मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी से इसको स्क्रीन किया जाता है ब्लड को पहले। स्क्रीन करने के पश्चात अगर ये सब कुछ में क्लियर निकलता है फिर हम उसको स्टोर करते हैं और बाद में फिर उसको यूज करते हैं। इस बीच अगर किसी भी ब्लड यूनिट में किसी भी बीमारी का पॉजिटिविटी आ गया तो उस ब्लड को हम डिस्कार्ड कर देते
1: हैं। किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना हो, रक्तदान करना चाहते हैं, तो जो जिला अस्पताल तवांग में स्थित जो ब्लड बैंक है वहाँ पर कार्य दिवसों में कभी भी समय आ सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डे ऐसे नहीं है, है ना?
0: नहीं, हमारा जो ब्लड बैंक है वो 24/7 ओपन है, और तो कोई भी वॉलंटरीली अगर ब्लड देना चाहेगा तो कभी भी आ सकता है। और हम फ्रीक्वेंटली बीच बीच में हम ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाते हैं, तो अगर कोई इच्छुक है तो उसमें भी आके ब्लड डोनेट कर सकता है।
1: कई बार ऐसे भी लोग आते होंगे जिसको अपने ब्लड ग्रुप बताने होंगे, तो रक्तदान से पहले शायद अपना ब्लड ग्रुप जानना तो सबसे जरूरी होते होंगे, तो क्या आप साथ साथ में ब्लड ग्रुप भी जांच करवा देते हैं?
0: जनरली आजकल सभी को अपना ब्लड ग्रुप जनरली पता होता है, अगर किसी को पता नहीं भी होता है तो हम उसको जांच करके बता

0: होते हैं।
1: जी जी, ब्लड ग्रुप्स जो है कितने तरह के होते हैं, और आप जो है यहाँ पर बहुत ही अनुभवी चिकित्सा अधिकारी हैं, तो सबसे ज्यादा मतलब हमारे तवंग में कौन सी ब्लड ग्रुप पाया जाता है?
0: ब्लड ग्रुप्स का जब बात करते हैं तो आप सभी को पता है ब्लड ग्रुप्स ए बी और ओ, फिर इसमें आर एच पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी जब लगा दे तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव ग्रुप्स में ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव, ये प्रोमिनेंट ब्लड ग्रुप्स हैं। यहाँ बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, इन पॉजिटिव ग्रुप्स का ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। नेगेटिव ग्रुप्स वैसे भी रेयर हैं, तो हम जो स्टोरेज करते हैं उसमें ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव ग्रुप्स ज्यादा स्टोर करते हैं, ओ पॉजिटिव स्टोर करते हैं। नेगेटिव ग्रुप्स हम स्टोर नहीं करते, क्योंकि अगर स्टोर कर भी लिया तो वो यूसेज नहीं होता है उसका और वो वेस्ट हो जाता है। तो नेगेटिव ग्रुप्स अगर हमको यदि जरूरत पड़ता है तो हम नेगेटिव ग्रुप्स वाले लोगों का एक रजिस्टर बना के रखते हैं, और जब हमको वेरी रेयरली अगर जरूरत हुआ तो हम ओवर द फोन वो जो पर्टिकुलर पर्सन है नेगेटिव ग्रुप वाला उसको बुला के उसको ब्लीड करके फिर वो ब्लड हम यूज करते हैं। थियोरेटिकली तो ओ नेगेटिव इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर, ये थियोरेटिकली ये माना जाता है कि ओ नेगेटिव जो है वो सभी को दे सकता है, बट प्रैक्टिकली जो है ये एकदम अनटिल अनलेस एकदम ग्रेव इमरजेंसी ना हो ये जो चीज हम यूज नहीं करते। हम जब ब्लड डोनेशन करते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूज करते हैं तो उसमें इवन सेम ब्लड ग्रुप में भी क्रॉस मैचिंग करके, अगर सेम ब्लड ग्रुप है तब भी ब्लड को क्रॉस मैच करना पड़ता है, मैचिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये जो ब्लड ग्रुप का जो एंटीजेंस है जो हम लोग ब्लड ग्रुप बोलते हैं वो तो बहुत मेजर एंटीजेंस है, और भी बहुत माइनर एंटीजेंस बहुत होता है ब्लड में, तो उन सब को मैच करके तभी ब्लड चलाया जाता है।
1: अच्छा, मतलब इसमें डॉक्टर साहब दोनों का जो है रक्तदाता और जो मरीज है जिसको रक्त की जरूरत है तो दोनों के ब्लड ग्रुप जो है एक जैसा होने से भी
0: सिमिलर होना चाहिए, और उससे भी आगे दोनों को क्रॉस मैच करना पड़ता है।
1: हाँ, उसमें अगर नहीं मिलते हैं तो
0: क्रॉस मैचिंग में यदि नहीं मिलता है तो फिर हम वो जो ग्रुप है उसको नहीं देते हैं।
1: जी जी जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे युवा श्रोताएं हैं उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मोम्पा सोसाइटी और तवांग का जो जनता है वो ब्लड को लेकर के बहुत ही कोऑपरेटिव है। हमें बहुत ही कम इंस्टेंसेस ऐसा हुआ जिसमें कमी का दिक्कत हुआ हो। यहाँ बहुत से एनजीओस हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, बीइंग मोम्पा फाउंडेशन, ह्यूमैनिटीज ग्रुप, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सोसाइटी, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में अपना भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ही सक्रिय हैं। तो मैं जब भी हमें कोई भी दिक्कत होता है या कमी होता है तो मैं इनसे कॉन्टेक्ट करता हूँ, और ये लोग बढ़ चढ़ के आके वॉलंटरी ब्लड डोनेशन देते हैं। और मैं और इस मंच का लाभ उठाते हुए उल्लेख करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी, SSB और ITBP के जवानों का, ये भी नियमित रूप से आकर के या तो हमारा जो ब्लड सेंटर है वहाँ आके डोनेशन देते हैं, या फिर वो अपना कैंप्स में कभी कभार इनका जो कैंटोनमेंट है वहाँ पे कैंप्स लगा के वहाँ से भी हमें डोनेशंस देते हैं। तो मैं इस माध्यम से इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और मिलिट्री पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, हमारा जो NGOs है और एज अ होल तवांग जो जनता है सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इतना प्रोएक्टिव है, इतना कोऑपरेटिव है कि हमें आज तक ब्लड का कमी नहीं हुआ है, और मैं ये भी आशा रखता हूँ कि ये जो जील है आगे भी बरकरार रहे।
1: जी, तो डॉक्टर साहब आज आपने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में अपने कीमती समय निकालकर आए, हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में भाग लिया। रक्त के महत्व, इससे जुड़े हुए कई सारे भ्रांतियाँ, इसकी प्रक्रिया, बहुत सारे रक्तदान के बारे में आपने हमारे श्रोताओं को जानकारियां दी, तो मैं डॉक्टर साहब इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना खंडरोड रिवाजन में जिला अस्पताल तवंग के डॉक्टर तेंजिंग कुंगा जी से रक्तदान के महत्व और प्रक्रिया विषय पर हुए एक साक्षात्कार। इसी के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:27 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है सुर और धुनों का साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज। इस कार्यक्रम के तहत आज हम आनंद लेंगे जोधा अकबर और याराना फिल्मों से दो गीतों के साज और आवाज का। तो लीजिए पहला साज प्रस्तुत है जोधा अकबर फिल्म से, जिसे सजाया है AR रहमान।

जोधा अकबर फिल्म के इस सांस का आइए अब आनंद लेते हैं जावेद अली के आवाज के साथ। इस गीत को शब्दों में पिरोया है जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, लीजिए आनंद लीजिए याराना फिल्म के इस साज का, किशोर कुमार के आवाज के साथ। इस गीत को शब्दों में पिरोया है अनजान ने।

साथियों, जोधा अकबर और याराना फिल्मों के इन्हीं साजों और आवाजों के साथ सुरों और धुनों का साप्ताहिक कार्यक्रम साज और आवाज यहीं समाप्त हुआ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़, साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय संध्या के 7:45 होने वाले हैं। श्रोताओं, आपसे चंती पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात रीजनल न्यूज 7:50 पर। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पशुपालन के इर्द गिर्द एक संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित कर रही है। भोपाल में आज राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि इस इकोसिस्टम में गोबर में बायोगैस और जैविक उर्वरक बनाने से लेकर डेयरी उत्पादकों के प्रसंस्करण और उनके लिए बाजार उपलब्ध कराने तक की गतिविधियां शामिल होंगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से पशुपालन प्रमुख लाभार्थियों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा मजबूत वैल्यू चेन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। श्री खांडू ने भारतीय कॉफी बोर्ड और राज्य के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में करीब 5 दशकों से कॉफी की खेती की जा रही है, लेकिन इसकी संभावनाओं का अभी पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में वर्तमान में करीब 600 हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी की खेती हो रही है और इसके लिए तकनीकी सहायता, नीतिगत हस्तक्षेप तथा वैल्यू एडिशन पर जोर देने की जरूरत है। श्री खानू ने कहा है कि सरकार कार्यशाला में सामने आए सिफारिशों पर आगे कार्रवाई करते हुए कॉफी उत्पादकों को आवश्यक सहयोग देगी। उन्होंने युवा उद्यमियों से भी कॉफी की खेती, प्रसंस्करण और इससे जुड़े अन्य उद्यमों में संभावना तलाशने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से राज्य में बढ़ते पर्यटन क्षेत्र को देखते हुए इन क्षेत्रों के अवसर तलाशने पर भी जोर दिया। उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज भारत में स्वच्छता के बदलते स्वरूप को रेखांकित करते हुए कहा है कि ये जनभागीदारी, नवाचार और सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतिबिंब है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन की 12 वर्ष की यात्रा पारंपरिक स्वच्छता अभियानों से आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी आधारित और टिकाऊ समाधानों तक पहुंच गई है, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित स्वच्छता प्रणालियां भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि यह अभियान अब जन आधारित आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ और हरित समुदाय को बढ़ावा देने के साथ ही स्वच्छता कर्मियों की गरिमा सुनिश्चित करने पर भी काम कर रही है।

0: में नागरिकों की भूमिका पर भी जोर देते हुए कहा कि सामुदायिक सेवा का प्रत्येक कार्य स्वच्छ, हरित और बेहतर भारत के लक्ष्य में योगदान देता है। समुदाय के करीब नवाचार, जांच और विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नरसिंह जिले से सिवे सर्कल के अंतर्गत दूरस्थ सिवे गांव में एकीकृत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी लोअर सियांग द्वारा नॉर्थ ईस्ट फाउंडेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड लाइवलीहुड स्किल्स यानी NIHealth के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, सामान्य चिकित्सा और सर्जरी संबंधी परामर्श के अलावा कैंसर, टीबी, मानसिक स्वास्थ्य और ऑडियोमेट्रिक जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। सिवे और आसपास के क्षेत्रों के करीब 190 लोग शिविर में लाभान्वित हुए। उन्होंने प्रयोगशाला जांच, परामर्श, दवाएं और आवश्यकता के अनुसार रेफरल सेवाएं भी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ऐतिहासिक तवांग मठ गादेन नामग्याल लासो के मठाधीश द्रामेंद्र सोंगाप तुलकू के से मुलाकात कर उनके साथ वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु से भी मुलाकात की, जिन्हें गोम्पा के निर्माण की शुरुआत के लिए पवित्र प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए इस समय ईटानगर में मौजूद है। श्री खांडू ने आशा व्यक्त की है कि सिद्धार्थ विहार में बनने वाला नया गोम्पा बौद्ध धर्म का एक नया जीवन केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि नया गोम्पा आने वाली पीढ़ियों तक शांति, करुणा और सद्भाव का शाश्वत संदेश फैलाने वाला बौद्ध धर्म का जीवन केंद्र बनकर उभरेगा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के सहयोग से महिला सशक्तिकरण, नशे के दुरुपयोग की रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, थर्ड जेंडर के समावेशन तथा महिलाओं और बच्चों के कानूनी अधिकारों पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेरिस के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र नाथ एस और अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष यालन तागा बुरांग ने सामाजिक चुनौतियों से निपटने में जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज शुभसाची भट्टाचार्य विथ रीजनल न्यूज। India finished with 85 medals at Asian Games 2026, their second best haul after Hangzhou Games 4 years ago. The fourth standing in the medals tally is also India's joint second best at Asian Games. Earlier, India defeated arch rivals Pakistan by 19 runs to win the men's T20 cricket gold at the Asian Games in Nishin, Japan today. Batting first, India posted 211 for 6 with Abhishek Sharma scoring 61 off 28 balls and Tilak Verma remaining unbeaten on 51 off 22. Pakistan managed to score 192 for 6 in 20 overs despite Hasan Nawaz's valiant 96. India also retained the men's hockey gold, defeating Malaysia 5-1 in Nagoya to secure qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. Harmanpreet Singh scored twice while Jugraj Singh, Hardik and Shilanand Lakra scored the other goals. Meanwhile, Pranavi Arsh created history by becoming the first Indian woman golfer to win an Asian Games gold while also helping India secure team silver. Union Cooperation Minister Amit Shah has said the Narendra Modi government is developing a complete ecosystem around cattle rearing to strengthen the rural economy. Addressing a state-level Gau Palak Sammelan in Bhopal today, Shah said the ecosystem would cover activities ranging from converting cow dung into biogas and organic fertilizer to processing dairy products and providing market access to give a new boost to the rural economy. He said cattle rearers would be among the major beneficiaries of the formation of the Ministry of Cooperation. Chief Minister Pema Khandu called for concerted efforts to expand coffee cultivation in Arunachal Pradesh, improve productivity and bean quality, and enhance farmers' incomes through a stronger value chain. Addressing the Hills to Cup coffee workshop organized by the Coffee Board of India and the State Agriculture Department, Khandu said coffee cultivation had existed in Arunachal for nearly 5 decades, but its potential remained underutilized. He said the state currently has around 600 hectares under coffee cultivation and stressed the need for technical support, policy interventions and value addition. Khandu said the government would follow up on the workshop's recommendations and extend support to growers. He also encouraged young entrepreneurs to explore coffee

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फनी फिल्म से एक देशभक्ति गीत का। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम कोने तराने समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत, जिसके तहत हम आनंद लेंगे आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। तो लीजिए पहला नगमा प्रस्तुत है उम्मीद फिल्म से मोहम्मद रफी के आवाज में। इस गीत की फरमाइश किए हैं तोरोवल नवनशहर पंजाब के गगनदीप ठांडी, तृप्ता कुमारी ठांडी, डॉक्टर प्रियंका ठांडी, डॉक्टर प्रशांत ठांडी, डॉक्टर प्रियम ठांडी, बेबी वामिका और वानी ठांडी ने। इस गीत के बोल है शकील बदियानी के और संगीत रवि का।

पद्मा टॉकीज नापानगर मध्य प्रदेश के सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशाल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बहन शाह और राजेंद्र जी शाह तथा जनकपुरी सहारनपुर के जॉन डिकैस्ट्रो, पॉल डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो के फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का दूसरा नगमा, जो कि है आराधना फिल्म से किशोर कुमार के आवाज में। इस गीत को शब्दों में पिरोया है आनंद बख्शी ने और संगीत से सवारा है एसडी बर्मन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम नगमा सुनिए। चरस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को शब्दबद्ध किया है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, तथा इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है गांधी चौक बलमेर राजस्थान के बबलेश पनवार, डैनी पनवार और मनीष पनवार से।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा या रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। श्रोताओं, आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 8:15 होने वाले हैं। अब सिचंदी पलों में सुनिए आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अरुणाचल न्यूज रील, आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। कृपया हमारे साथ बने रहे।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर है हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता, ओलंपिक 2028 के लिए क्वालिफाई किया। कुश्ती में अमन सहरावत ने स्वर्ण, अंतिम पंघाल ने रजत और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक देश के नाम किए। गोल्फ में प्रणवी ने भारत को दिलाया ऐतिहासिक स्वर्ण, महिला टीम ने जीता रजत पदक। तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने रिकर महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। नीरज ने व्यक्तिगत रिकर इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार जीता स्वर्ण पदक, फाइनल में पाकिस्तान को हराया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में जारी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां भारतीय एथलीटों ने अलग अलग खेल में अच्छा प्रदर्शन कर देश को आगे बढ़ाया है और देश का मान भी बढ़ाया है। एशियाई खेलों में आज भारत ने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा खिलाड़ियों का। सबसे पहले आज बात की जाएगी हॉकी पर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मैच में मलेशिया के खिलाफ 5-1 से जीत दर्ज करते हुए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ भारत ने लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक का टिकट भी अपने नाम कर लिया है। सुनते हैं इस मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
1: एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल आ गया है प्रभु। पहली बार हुआ है कि मेन और वुमेन दोनों हॉकी टीम्स ने एक साथ गोल्ड मेडल जीते हों। लॉस एंजल्स वालों, स्वागत की।

फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने दबदबा बनाए रखा। 11वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करते हुए भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि 14वें मिनट में मलेशिया के शैली सिल्वरियस ने फील्ड गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। 23वें मिनट में जुगराज सिंह ने बेहतरीन पेनल्टी कॉर्नर के जरिए भारत को 2-1 से आगे कर दिया। हाफ टाइम के बाद 42वें मिनट में हार्दिक सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक को शानदार तरीके से गोल में तब्दील किया। इसके बाद 54वें मिनट में शिलानंद लाकड़ा ने एक फील्ड गोल दागा और 57वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने अपना दूसरा गोल पेनल्टी कॉर्नर से करते हुए मलेशिया की उम्मीदों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। भारतीय टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार अपना स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव किया है। इससे पहले हॉकी टीम ने एशियन

0: गेम्स 2022 का गोल्ड भी अपने नाम किया था। यह एशियन गेम्स के अलग अलग संस्करणों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कुल पांचवा स्वर्ण पदक है। भारत ने 1966, 1998, 2014, 2022 और 2026 में खिताब अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स कैन के लिए अक्षित वैद्यान।
1: पांच एक से ये जीत दर्शाती है कि भारत ने सिर्फ ये मुकाबला जीता नहीं बल्कि डोमिनेट करके भी खेला है। अगर हॉकी की बात की जाए तो महिला टीम ने भी भारत को स्वर्ण पदक इससे पहले दिलाया था और आज पुरुष हॉकी टीम ने भी देश के नाम एक और पदक किया। हॉकी से चलते हैं कुश्ती की ओर, जहां भारतीय रेसलर ने अलग अलग स्पर्धाओं में देश के नाम कई पदक किए हैं। एशियन गेम्स में भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने स्वर्ण, अंतिम पंघाल ने रजत और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक देश के नाम किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: भारत का एक गोल्ड मेडल कुश्ती में और आ चुका है अमन सहरावत। इन्होंने पिछले एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था और इस बार सीधा रवि बदलकर
3: अमन ने रोमांचक फाइनल मैच में वर्ल्ड चैंपियन चोंगसोंग को 11-7 से हराया। अमन का एशियन गेम्स में ये लगातार दूसरा पदक है। पिछले एशियन गेम्स में अमन ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। इस प्रतियोगिता में ये भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले सुजीत कलकल ने फ्री स्टाइल स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में अमन को साउथ कोरियाई पहलवान चोंगसोंग से कड़ी टक्कर मिली। अमन ने इंजरी ब्रेक के बाद अपनी बढ़त को 6-1 कर लिया। मैच के आखिरी मिनट में अमन ने एक बार फिर मुकाबले का रुख पलटा और शानदार लगाते हुए चोंगसोंग के खिलाफ अहम बढ़त बना ली। अमन ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन को अपने दांव से पहले पूरी तरह लॉक किया और फिर उन्हें पलटने के साथ ही 4 पॉइंट्स हासिल किए। अमन का ये दांव निर्णायक साबित हुआ और वो फाइनल मुकाबले को 11-7 से अपने नाम करने में सफल रहे। वहीं अंतिम पंघाल ने महिलाओं के 53 किलोग्राम रेसलिंग इवेंट में रजत पदक जीता। उन्हें जापान की कियोका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में अंतिम पंघाल की धीमी शुरुआत का फायदा उठाकर कियोका ने शुरुआती बढ़त बना ली। पहले पीरियड के खत्म होने तक कियोका ने अपनी बढ़त 2-0 कर ली। अंतिम पंघाल ने मुकाबले में वापसी करने की कोशिश की और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उन्होंने कियोका को पैर से नीचे गिराकर 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। हालांकि जापानी रेसलर ने तेजी से भारतीय खिलाड़ी को मैट से बाहर धकेल दिया। अंतिम ने फैसले को चुनौती दी लेकिन उनका रिव्यू सफल नहीं रहा। कियोका ने अंतिम के पैर पर हमला करके अपनी बढ़त 9-1 कर ली और स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर लिया। उधर पुरुषों की 86 किलोग्राम कैटेगरी में दीपक ने कांस्य पदक जीता। एक कड़े और कम स्कोर वाले मुकाबले में संयमित प्रदर्शन करते हुए अपने मेडल टैली में एक और मेडल जोड़ा। दीपक ने शुरुआती दौर में 2 पॉइंट्स बनाए और दूसरे दौर में 1 पॉइंट गंवाने के बावजूद अच्छा बचाव करते हुए जीत हासिल की और देश को एक और पदक दिलाया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स के।
1: तो कुश्ती में भारत ने तीनों ही पदक देश के नाम किए। अमन ने जहां स्वर्ण जीता, अंतिम ने रजत और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीतकर भारत का झंडा शान से लहराया है। और अब चलते हैं गोल्फ की ओर। गोल्फ में प्रणवी उर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश को स्वर्ण पदक दिलाया है। 4 दिन तक चले इवेंट में प्रणवी व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सुनते हैं प्रणवी के प्रदर्शन पर ये खास रिपोर्ट।
4: There's the touch and it goes. She gets it. Pranavi Sharath-Urs, even par on the day, 15 under. She finishes overall India's first gold medal winner in golf.
5: Pranavi ne event ke aakhri din even power 70 ka score kiya aur kul 15 under 265 ke score ke saath swarn padak jeeta. Pranavi ne mahila team ko 14 under 546 ke score ke saath rajat padak dilane mein bhi aham bhumika nibhai. Cheen ki Yin Ruoning aur Singapore ki Shannon Tan ne sanyukt roop se रजत पदक जीता। प्रणवी आखिरी दिन 10 से 3 स्ट्रोक की बढ़त के साथ उतरी थी। प्रणवी ने 6th, 10th और 13th होल पर 3 बर्डी के साथ वापसी की और बढ़त बना ली। आखिर में 18th होल पर इवन पावर स्कोर करके उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 अंडर 246 का स्कोर बनाया। इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने एशियन गेम्स के महिला टीम इवेंट में रजत पदक जीता। खास बात ये है कि महिला टीम स्पर्धा में एशियन गेम्स इतिहास का ये भारत का पहला पदक है। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। बेहतरीन प्रदर्शन किया है प्रणवी ने और आज एक और पदक देश को दिलाया।

0: की खिलाड़ियों ने कैसा किया गोल्फ में प्रदर्शन?
1: प्रदर्शन की बात करें अगर प्रशांत, तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है प्रणवी उर्स ने, और टीम इवेंट में भी भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो अदिति अशोक 14वें स्थान पर रहीं। उन्होंने आखिरी दिन 3 अंडर 67 का स्कोर बनाया और टूर्नामेंट का समापन 2 ओवर 282 के कुल स्कोर के साथ किया। वहीं दीक्षा डागर संयुक्त 23वें स्थान पर रहीं। उन्होंने चौथे दिन 7 ओवर पार का स्कोर बनाया और उनका कुल स्कोर 12 ओवर रहा।
0: जी, इन खिलाड़ियों से पदक नहीं आ सका, लेकिन प्रणवी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है गोल्फ में। और अब बात करते तीरंदाजी पर। कुमकुम मोहत ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कुमकुम ने शूट ऑफ में येजिन ओह को हराकर एशियन खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उधर नीरज चौहान ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में धीरज मोहम्मद देवरा को हराकर कांस्य पदक जीता। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: सत्रह वर्षीय कुमकुम ने फाइनल में 5-5 से बराबरी के बाद 6-5 से जीत हासिल की। इस जीत से भारत को लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक गेम के लिए इंडिविजुअल कोटा भी मिला, जिसमें कुमकुम और ओह दोनों ने अपने अपने देशों के लिए एक एक कोटा हासिल किया। फाइनल में कुमकुम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। ओह ने पहला सेट 29-27 से जीतकर 2-0 की बढ़त बना ली, जबकि दूसरा सेट 29-29 पर खत्म हुआ, जिससे साउथ कोरियन खिलाड़ी 3-1 से आगे हो गई। भारतीय खिलाड़ी ने तीसरे सेट में जोरदार वापसी करते हुए लगातार 3 परफेक्ट शॉट्स के साथ 30 अंक हासिल किए और मैच 3-3 से बराबर कर दिया। ओह ने चौथा सेट अपने नाम किया। हालांकि कुमकुम ने 5वें सेट में धैर्य रखते हुए एक के बाद एक परफेक्ट शॉट्स लगाकर 30 अंक बना लिए, जिससे फाइनल शूटआउट में चला गया। इसके बाद कुमकुम ने डिसाइडर में अपना धैर्य बनाए रखा और परफेक्ट शॉट लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। उधर नीरज चौहान ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक जीता। 5 सेट तक चले मुकाबले में नीरज ने धीरज को 6-4 से हराया। ब्रॉन्ज मेडल मैच में नीरज ने पहला सेट 29-26 के स्कोर से जीता, जबकि दूसरे सेट में 27-28 से और तीसरे सेट में 28-29 से हार का सामना करना पड़ा। धीरज इस समय 4-2 से आगे थे और उन्हें सिर्फ एक सेट जीतने की जरूरत थी, लेकिन नीरज ने चौथा सेट शानदार तरीके से खेला और 3 बार 10 का स्कोर करके स्कोर 4-4 से बराबर कर दिया। धीरज ने आखिरी सेट की शुरुआत 8 के स्कोर के साथ की, जबकि नीरज ने 10 का स्कोर किया। धीरज ने सुधार करते हुए 2 बार 10 का स्कोर किया और आखिरी सेट में कुल 28 पॉइंट बनाए। नीरज को ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए 19 अंकों की जरूरत थी। उन्होंने अपने आखिरी 2 तीरों पर 9 और 10 का स्कोर करके कांस्य पदक अपने नाम किया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: बेहतरीन प्रदर्शन रहा कुमकुम का हो या नीरज का, आइए सुनते हैं कुमकुम मोहत ने इस शानदार प्रदर्शन पर क्या कुछ कहा।
3: बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेडल जीता है मैंने आज, और जो सोचा था वही हुआ है। ये सपना था एक, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ और डोंट सी द रिजल्ट, जस्ट डू योर हार्ड वर्क।
0: और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की टीम 192 रन ही बना सकी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: आउट हो गए हैं और ये मैच भारत ने जीत लिया, और इसी के साथ यहाँ आ गया एक और गोल्ड मेडल। भारत ने ये मुकाबला जीत के एक और स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। यहाँ
5: भारतीय पुरुष टीम ने लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की शुरुआत खास नहीं रही। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं संजू सैमसंग सिर्फ 2 रन ही बना सके। कप्तान श्रेयस अय्यर 21 और ईशान किशन 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि अभिषेक ने एक छोर पर टिककर शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 28 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्के की मदद से 61 रन की शानदार पारी खेली। वहीं उप कप्तान तिलक वर्मा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए नाबाद 51 रन बनाए। तिलक ने 3 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्होंने शिवम दुबे के साथ मिलकर 6वें विकेट के लिए 62 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारतीय टीम को 200 रनों का आंकड़ा पार कराया। 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। साहिबजादा 10 और उस्मान खान सिर्फ 3 रन बना सके। 39 रन के स्कोर पर 3 विकेट खोकर मुश्किल में नजर आ रही पाकिस्तानी पारी को हसन नवाज और शैम अयूब ने संभाला। दोनों ने 4वें विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी की। हसन

0: बाज ने 96 रन की पारी खेली। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे ने दो दो विकेट लिए। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: आइए सुनते हैं ईशान किशन ने पदक जीतने के बाद क्या कहा।
2: When we got here, Olympics was not there for us. We were not supposed to play in the Olympics, but now that we know that we will get an opportunity to play there, I mean, we are very excited. Any of us would want to have a medal from Olympics. Very nice. We gave our best. I think all the batters, especially Abhi and Tilak, Dubey, chipping in here by doing that partnership, everything, like everyone was doing their best. And I think the result got in our side in the end. It's a big thing. Asian Games, you are the best side in Asia. So it's a big thing for us.
1: उधर न्यू चंडीगढ़ में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 352 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक वेस्टइंडीज ने 25वें ओवर में दो विकेट पर 173 रन बना लिए हैं। इससे पहले पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। केएल राहुल ने नाबाद 129 रन बनाए, रोहित शर्मा ने 92 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन की पारी खेली। श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.eir@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
4: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY.
5: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
4: In quarter 1, gross NPAs of banks are at multi-decadal low.
3: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12,00,000 करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
6: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा

0: प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
4: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक

0: समर्पण नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
1: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
0: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
2: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त चार प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मित के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मित की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मित हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
3: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में

परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहन और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।